जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर सरण। गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण योग। मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ। आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमणं काटी है जमजाल। काम क्रोध लो मो मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन। मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत। सर्ब बिद भ्रम ते पुकारे कतै नाही छोट हर चरण सरण अपार प्रभ के दृढ़ गही नानके ओट। गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आराध श्री धर सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरण अरबिंद उपास काल कलेस मिटंत सिमरन काड जम दूत फास रहाओ। सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुवाओ। गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राए जाहे कलेस मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए। गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरनी वड़े भाग लिव लागी कवल प्रगास पाए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ पहरो हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरह संगत सब उदरै बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ सरन परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावै त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावै। केताओ बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ। उर्द मूल जिस साख्त लाहा चार बेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर अंगन मेरा पुहप पत्र तत डाला सर्ब जोत निरंजन संभू छोडो बहु जंजाला। सुन सिखवंते नानक बिनवै छोडो माया जाला मन विचार एक लिव लागी। पुनरप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कथियले सो वै जे जाने रोगी। तिस कारण कामना तंदा नाही तंदै गिरही जोगी। काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत ते आया गुर प्रसादी पाया। ज्ञान ध्यान सब दात कथियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मदत तासर साधं जगत नाही सूता। महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनै ना गर्म बेख तज अमृत पी आया। गुजरी महला पहला कवन कवन जाचै प्रभ दाते ताके अंत न परै सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरासा देवनहार। ऐ जी जप तप संयम सच आधार हर हर नाम दे सुख पाई है तेरी भगत परे पंडार रहाओ। सुन समाद रह लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल तरण गगन तह नाही आपे आप किया करतार। ना तद माया मग ना छाया ना सूरज चंद ना जोत्या पार
ਸਰਬ ਲੋਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਚਨ ਅਭਿਯੰਤਰ ਏਕਾ ਨਦਰ ਸੋਤਰ ਭਵਨ ਸਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨ ਤਿਨਕੀਆ ਬ੍ਰਹਮਾ।

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदर नाम पियाया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हो मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटा, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पचाया, पंडित पुल पुल माया वेख, दिखा किने केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नाम दईये खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अहंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाई है, जां कर दे सब कराया, पौड़ी माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा, एह जम की सिरकार है, इना उपर जम का डंड करारा, मनमुख जम मग पाईयन, जिन दूजा पाओ प्यारा, जम पर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा, जिसनों कृपा करे तिस गुर मिले, गुरमुख निस्तारा। श्लोक महला तीजा, हौ मैं ममता मोहनी, मनमुखा नो गई खाए, जो मोहे दूजे चित लाएं दे, तिन्ना व्याप रही लपटाए, गुर के शब्द पर जाली है, ता एह विच्चों जाए, तन मन हो वै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए। महला तीजा, एहो मन केतड़िया, जुग भरमिया, थिर रह न आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेलो पाए, जां हर बख्से ता गुर मिलै, अस्थिर रह समाए, नानक मन ही ते मन मानिया, नाक्ष मरै ना जाए। पौड़ी, काया कोटिया पार है, मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहया, आपे रस भोगी, आप अतीत अलिप्त है, निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे, हर करे सो होगी, हर गुरमुख नाम ते आई है, लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाहो वाहो आपा खाइंदा, गुर शब्दी सच सोए, वाहो वाहो सिफत सलाह है, गुरमुख बूझे कोए, वाहो वाहो बाणी सच है, सच मिला वाहोए, नानक वाहो वाहो करत्या प्रपाया, कर्म प्राप्त होए। महला तीजा, वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, पूरे शब्द प्र मिलया आई, वड भागिया वाहो वाहो मोह हो कढ़ाई, वाहो वाहो करे सही जन सोहणे, तिनको परजा पूजने आई, वाहो वाहो कर्म प्राप्त होवै, नानक दर सच्चै सोभा पाई। पौड़ी, बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ कुसत अभिमानी, परम पूले नजर नायावनी, मनमुख अंध ज्ञानी, उपाय कता न लभनी, कर पेख तखे पेखवानी, गुर शब्दी खो लाई अनु, हर नाम जपानी, हर जीव अमृत बिरख है, जिन पिया ते त्रिपतानी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह करत्या रैन सुख विहाए, वाह वाह करत्या सदा आनंद होवै मेरी माए, वाह वाह करत्या हर सिउ लिव लाए, वाह वाह करमी बोलै बोलाए, वाह वाह करत्या शोभा पाए, नानक वाह वाह सत्र जाए। महला तीजा, वाह वाह बाणी सच है,

बन महिया अजहो ना पेट अगई है, जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है, रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो एहो अवसर कत पई है। भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बिहई है, कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रगराई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जौ भीख मंगावै ता क्या घट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै सह बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस हों पूजो दूजा नजर न आई। एक है पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला, मलै ना लाछ पार मलो। परम लियो बैठो री आई, आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कह किन बूझी है, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश है पंखिया लो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजे मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिन तीने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछर थनो बिटारियो, फूल पावर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोचन।

अंतकाल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै। अंतकाल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वां केरदा बसै। गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। परमाद पुरख मनोपमं सत आद भाव रतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं। रहाओ इच्छस जमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तार सरणं। हर भगत निज नेह केवला हृद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा। गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं पवभूत सर्वगतं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभं गुरप्रसाद। राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे। रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के।

कित गली हर के संत बतावो मार्गो हम पीछे लाल चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर एह चाल बनी है भली लटरी मदरी ठाकर पाई ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की जो पावे पिरसा भली नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू लै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना हरे अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पैहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार।

पयो अनुग्रह मिट्यो मोर्चा, अमोल पदार्थ ला दो बलिहारे नानक लख बेरा, मेरे ठाकर अगम्यागा दो देव गंधारी पंजवा, माई जो प्रभ के गुण गावे सफल आया जीवन फल तां को, पार ब्रह्म लिवलावे रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता, जो साधु संग पावे नाम उचार करे हर रसना, बहुन न जो नीत आवे पूर्ण ब्रह्म रव्या मन तन मह, आना दृष्टि आवे नरक रोग नहीं होवत जन संग, नानक जिस लड़ लावे देव गंधारी पंजवा, चंचल सुपने ही उर जायो इतनी ना बूझे कबहू, चलना बिगल पयो संग मायो, रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया, बिखिया एक उपायो लोभ सुने मन सो कर माने, बेग तहां उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो, संत द्वारे आयो करी कृपा, पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो। देव गंधारी पंजवा, सर्व सुखा गुर चरना, कालमल डारन मनै सुधारन, ए आसन मोय तरना, रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन, एह टहल मोहे करना बिकसै मन होवै परगासा, बहुर ना गर्भै परना सफल मूर्त, परसौ संतन की एह त्याना तरना, पयो कृपाल ठाकर नानक पर्यो साध की सरना। देव गंधारी महला पंजवा, अपने हर पै बिनती कही है, चार पदार्थ अनंद मंगल निद सुख सहज सिद्ध लहिए, रहाओ मान त्याग हर चरनी लागो, तिस प्रभ अंचल गही है, आंच ना लागे अग्न सागर ते, शरण स्वामी की अही है, कोट प्रात महा अकिरत कान, बहुर बहुर प्रभ सही है, करना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक ते शरण ही है। देव गंधारी पंजवा, गुर के चरण हृदय प्रवेशा, रोग सोग सब दुख बिनासे, उतरे सगल कलेसा, रहाओ जन्म जन्म के किल बिखनासे, कोट मजन इशनाना, नाम निदान गावत गुण गोविंद लागो सहित्याना, कर कृपा अपना दास कीनो, बंधन तोर निरारे, जप जप नाम जीवा तेरी बाणी, नानक दास बलिहारे, शके तेनो। देव गंधारी महला पंजवा।

साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जा रहो सब ते नीच आत्म कर मानो मन में उत्सुकता रहो। गुण गावे ठाकरे अबनासी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए और तारो देवगदारी महला पंजवा प्रभ जीओ पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर ध्यान तादर रैनी जी प्रांते प्यारा रहाओ। शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत् विचारा दीनानाथ प्राण पथ पूर्ण पावजल उदर नहारा आदि जुगाद भगत जन सेवक ताकी बिखै आधारा तिन जन की धूर बांछै नित नानक परम।

प्रेम रसाने जा को उपजी छोड़ न कतहूं जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधियो बोझो नी परमाई है टिकट ना पावै बिन सतसंगत किसे आगे जाई रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन भीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन त्याया हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया। पारि उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे सरण आयो रख नहारे रहाओ। सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछै अंती वारे जब चितवाओ तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवा प्रभ एह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजै कर संतन का चेरा रहाओ। प्रातः काल लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पाव तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गाव। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रही है एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लई है। राग देव गंधारी महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सधी संगे अंदन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कत हूं जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रे रोम ना समसर लाए। मंदर भाग सोभ द्वार अनहद रोण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन याचै प्रम आयो है सगल थान रे आहे परयो संत पाछै रहाओ। किस हों सेवी किस आराधी जो दिष्टै सो गाछै साध संगत की सरणी परियै चरण रेन मन बांछै। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छै आए पयो नानक गुरचरणी तो उतरी सगल दुरा छै। देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे
सबहु मद निरारे रहाओ, राज ना चाहो मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे, ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा, मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर, शरण परयो संत हारे, कहो नानक प्रभ मिले मनोहर, मन सीतर बिगसारे। देवगंधारी महला पंजवा, हर जप सेवक पार उतारियो, दीन दयाल पए प्रभ अपने, बहुड़ जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के, रत्न जन्म नहीं हारियो, प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया, कुल समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर, सास ग्रास उचारियो, नानक उठ गही जगदीशर, पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा, कर चौथा एको अंकार, सतगुर प्रसाद करत फिरे बन पेख, मोहन रहत निरार रहाओ। कथन सुनावन गीत नीके गावन, मन में तरते गार, अत सुंदर बहु चतर सियाने, विद्या रसनाचार, मान मोह मेर तेर बिबरजत, एहो मार्ग खंडे तार, कहो नानक तिन पव जल तरियले, प्रभ कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवा, कर पंजवा एको अंकार, सतगुर प्रसाद मैं पेख्योरी उचा, मोहन सबते उचा, आना सब

सो दिन सफल गणया हर प्रभु मिलाया राम, सब सुख प्रगटया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइए, भज साध संगे मिले रंगे बहुत जोन ना ताइए। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलया बौड़ कतु ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम, माया मोहे मगन कट लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने, अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी, बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। आगाध बोधिया पार करते मोहे नीच कछू ना जाना, रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना। त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी, नानक शरण समरथ स्वामी पैज रख मोरी। जा ते विछड़िया तिने आप मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण मैं प्रगट पए, सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले। छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया, नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत बोल सो तरमीड़िया, मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया। माया ब्योहारी राम संग तेरे कश ना चले बिना गोविंद नामा। देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा, पुत्र कलतरना संग सोभा हस्त कोर विकारी। बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद भरे, जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते बिललाही राम, बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई, आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कटकट आही। बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम। सर पर विछड़ना मोहे पछताणे राम, हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हां हां करतना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के केतिया पछताने। तार अनुग्रह अपना कर लीना राम, पूजा गह काढ़ लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले। रसना आराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मिलाए सो

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाहे हो हर सबना ते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता, जग जीता सब कोए, नामे कार्य सिद्ध है सहजे होए सो होए, गुरमत मत अचल है।

माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्त अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जां सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया तदों क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतों पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया। आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा। अंदन सहज प्यार सदा आनंद, गावै गुण साचे अर्ध उर्ध उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार। नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा, कहया कथया ना पाईऐ, अंदन रह सदा गुण गाए। विणकर मैं कहना ना पायो, भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आए। नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र, आप कथा आप भीजै। आपे ही बै पूजे करता, आप पर पंच करी जय। आप निर्विरत आप निर्विरती, आपे कथ कथी जय। आपे पुन सब आप कराए, आप अलिप्त वर्ती जय। आपे दुख सुख देवै करता, आपे बख्श करी जय। सलोक महला तीजा, सेखा अंदरों जोर छड़ तू, पाओ कर चल गवाए। गुर कै पै केते निस्तरे, पै विच निरपाओ पाए। मन कठोर शब्द भे तू, सांत वसै मन आए। शांति विचकार कमावणी, सा खसम पाए थाए। नानक काम क्रोध किनै ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा, मन मुख माया मोह है, नाम ना लगो प्यार। कूड़ कमावै कूड़ संग्रह, कूड़ करे आहार। बिख माया तन संच मरे, अंते होए सब शार। कर्म धर्म सुच संयम करे, अंतर लो विकार। नानक जे मन मुख कमावै, सो थाए ना पवै, दरगह होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी, आपे खंडवर भंड करे। आप समुंद आप है सागर, आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरमुख करे हरे। आपे पवजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा, सदगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। नाम पदार्थ पाई है, अचंत वसै मन आए। जन्म मरण दो कटी है, हम मैं ममता जाए। उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रहे समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा, नाम रत्ता सतगुरु है, कलयुग बोइथ होए। गुरमुख होवै सो पार परै, जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए। नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है।

साहेब सफलियो रुखड़ा अमृत जाका नाओ जिन पिया ते तृप्त पए हों तिन बलहार जाओ। मैं की नजर ना आवही वसै हबिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर पी तरपाल। नानक तेरा बाणिया तू साहेब मैं रास मन ते तोखा तां लह जा सिफत करी अरदास। वडंस महला पहला गुणवंती सहोरावया निर्गुण कूके काए जे गुणवंती थी रह ता भी सहोरावन जाए। मेरा कंतरी सालू की तन्यवरा रावे जी रहाओ करनी कामन जे थी है जे मन तागा होए। माणक मुल ना पाई है लीजे चित परोए राहो दसाई ना जुलाया खामड़ी आस तैं सह।

जल थल महियल रहया परपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वरदाता अंतर जामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उरतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै। ना जियो मरै ना कबहू चीजै, वडभागी गुरपुरा पाई है। गुर कृपा ते प्रभु त्याई है रहाओ। हर रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जात कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

जह चित आवै सो थान सुहावा, जित वेला विसरै ता लागै हवा। तेरे जी तू सधी साथी, संसार सागर ते कढ़ दे हाथी। आवन जाना तुम ही किया, जिस तू राखै तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब अवर ना होर, बिनों करै नानक कर जोर। बड़हंस महला पंजवा, तू जाना है ता कोई जाने, तेरा दिया नाम खाने। तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ, तुझे आपे कारणू आपे करना, हुक्मे जमण हुक्मे मरना। नाम तेरा मंत्र आधारी, नानक दास बख्शीश तुम्हारी। वडहंस

पूरे। जे सौ खेल खिलाइए बालक रह ना सके बिन खीरे। मेरा अंतर पुखना उतरे अमाली जे सौ भोजन मैं नीरे। मेरा मंत्र प्रेम परम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई मैं मेलो मित्र सुखदाता। ओ जी की मेरी सब बेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हाँ एक खेन तिस बिन रह ना सका ज्यो चात्रक जल कहो बिललाता। हाँ क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण कहो रख लेता। हाँ पही उड़ीनी कंत कहो अमाली सो पिर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे बिन पिर कितए ना लेखा। एहो कापड़ ताना सुखा वही कर ना सको हों वेसा। जिनी सखी लाल रावया प्यारा तेन आ गए हम आदेसा। मैं सब सिंगार बनाया अमाली बिन पिर काम न आए। जा सह बात न पुछिया अमाली ता बिरथा जो मन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली जिन सौ रिया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली तिनके तोमा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया प्रभ दूरे। जा मिलिया पूरा सतगुरु अमाली ता आसा मनसा सब पूरे। मैं सर्व सुखा सुख पाया अमाली फिर सर्व रहा भरपूरे। जन नानक हर रंग माणिया अमाली गुर सतगुर कह लग पैरे। वडहंस महला तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सच्ची बाणी सच तुहन सच शब्द विचारा अंधन सच सलाहना तन तन वडपाग हमारा। मन मेरे सचे ना मिटो बल जाओ दासन दासा होए रहै ता पावे सच्चा नाम रहाओ। जेवा सच्ची सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए। सच खेती सच बीजना साचा वापारा आंदन लाहा सच नाम तन भगत भरे पंडारा। सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनों बख्शे तिस मिले मैली पाए थाओ। आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जोनी मूल ना पाहे। गुरमुख दर साचा है सचिया है साचे माए समाए। अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए। सच्चे थान सच सलाहना सदगुर बलिहार जाओ। सच वेला मूर्त सच जित सच्चे नाल प्यार। सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार। नानक सच्चा मिले ता मिले आपे ले मिलाए। ज्यो पावे त्यों रखसी आपे करे रजाए। वडहंस महला तीजा मनुआ दे दिस्तावंदा ओ कैसे हर गुण गावे। इंद्री व्याप रही अधकाई काम क्रोध नित संतावे। वाह वाह सहजे गुण रवीजे राम नाम इस युग में दुलभ है। गुरमत हर रस पीजे रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे। गुरमति आपे आप पछाणे ता निकर वासा पावे। ए मन मेरे सदा रंगराते सदा हर के गुण गाओ। हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ। हम नीच से उत्तम पहे हर की सरनाई पाथर डुबदा काढ लिया साची वड़ियाई। बिकसे अमृत पहे गुरमत बुद्ध पाई। अको परमल पहे अंतर वासना वसाई। मानस जन्म दुलंब है जग में खटिया आए। पूरे भाग सतगुर मिले हर नाम ते आए। मनमुख पूले बिख लगे अहला जन्म गवाया। हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया। मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया। नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुक्त तिन पाया। वडहंस महला

गावन सुर नर सुगण सुजाना, सुर नर सुगण सुजान गावे, जो तेरे मन पावे माया मोहे चेतै नाही, ऐला जन्म गवावे। एक मूड मुगद ना चेतै मूले, जो आया ते जाना, नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाणा। तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी, सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी। साओ प्राणी तिन्ना लागा, जिन्नी अमृत पाया, नाम तेरा जोए राते नित चढ़ै सुवाया। एक कर्म धर्म ना होए संजम, जाम नायक पछाणी, भक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी। हाँ बलिहारी साचे नावै, राज तेरा कबो ना जावै, राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावै। चाकर ता तेरा सोए होवै, जोए सहे समावै, दुश्मन ता दुख ना लगै मूले, पाप नेड़ ना आवे। हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावै, जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे, कीर्त करै स्वामी तेरे द्वारे। जपै ता सा

नदर करै ता सच पछाणा, साचो पछाणा ताम तेरा, जाम आप बजावे दुख भूख संसार किए सा सह चुकावे। बिनवंत नानक जाय सहसा, बुझै गुर विचारा, वड्डा साहिब है आप अलख अपारा। तेरे बंके लोयन दंतरी साला, सोहने नक जिन लंबड़े वाला। कंचन काया सोने की ढाला, सोवन ढाला कृष्ण माला। जपो तुसी सहेलियो, जम द्वार ना हो खड़िया, सिख सुनो महेली हो।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवने अपना अंतर सबद्या पारा अंतर सबद्या पारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजै पत गवाई हाउ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेव ने अपना से जनवट पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत ने चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुर अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजिया सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुणमय गुणी समाई राम गुणमय गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनों एतवा पार लाए रतन पदार्थ बन जी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल बेखावनी बो वदै विकारा राम बो वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नाम पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा खोटे खरे सब परखिया नु ते सच्चा कै दरबारा राम खोटे दरगह सुटियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुग्ध गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख हटे संसारा खोटे खरे परखियन ते सच्चा दरबारा राम आप करे किसे आखिया होर करना छूना जाई राम जित पावै तित लाए सी जो तिसदी वड्याई राम जो तिसदी वड्याई आप कराई वर यामना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुरप्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछू ना जाई वड़हंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम पाई है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडभागी अंतर बाहर भगती राते सच नाम लिव लागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया साचे के वापारा हमै माया मैल है माया मैल पुरी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पी अपनिहारी जिस नजर करे सोई सच लागे रसना राम रिविजय नानक नाम रते से निर्मल होर हमै मैल भरिजै पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पै करै पुकारा राम माया मोह अंतर मन लागे।

तू दुख भंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे। हर तारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला।

बेखम पयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़पागी लंघै गुर खेवट शब्द दराए आन दिन हर रंग हर गुण गावै हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी ते जिन दे राम पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जाने आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वढांस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलियो किया करत है हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुविन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुवामी अंतर जामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक वखाणै नाम जाणै हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हरदास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस महला पंजवा शंत कर चौथा।

हर मने मीठा प्रभु तूठा अम्योग उठा सुख पय दुख नाश परम विनाश तंते जप जगदीश ईसै जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तन खनिया मन्या जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक सही कंडिया नानक जाने सत साई संतना बाहरा शंत मिल जल जलै खटाना राम संग ज्योति ज्योत मिलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आपे आपे जानी है तह सुन सह समाद लागी एक एक वखाणी है आप भुगता आप मुगता आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासे मिल जल जलै खटाना वडहंस महला पंजवां प्रभ करण कारण समरथा राम रख जगत सगल दे हत्था राम समरथ सरना जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हाँ कुरबाणी दास तेरे जिन्नी एक पछाता वर्ण चिहन न जाए लखिया कथन ते अकथा बिनवंत नानक सुनो बिनती प्रभ करण कारण समरथा एह जी तेरे तू करता राम प्रभ दुख दर्द भ्रम हरता राम भ्रम दुख दर्द निवार खिन मैं रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरण आवै गुण निधान पावै सो बहुड़ जन्म न मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पैर हर त्याई है राम मन इच्छा अड़ा फल पाई है राम मन इच्छ पाई है प्रभ त्याई है मिटे जमके त्रासा गोविंद गाया सा संगाया पई पूर्ण आसा तज मन मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाई है बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा हर हर त्याई है दर वाजे अनहद वाजे राम घट घट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बिराजे अगमा गोचरी उच्चा गुण बेअंत किश कहण न जाई कोय ना सकै पहुचा आप यो पाए आप प्रतपाले जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुखनाम भगती दर वजे अनहद वाजे राग वढ़ंस महला पहला घर पंजवा अलाहणिया एको अंकार सतगुर प्रसाद तन सरंदा सच्चा पातशाह हो जिन जगत अंदै लाया मोहलत पुन्नी पाई भरी जानी अड़ा कत चलाया जानी कत चलाया लिखिया आया रुन्ने वीर सबाए काया हंस थिया वे छोड़ा जांदन पुन्ने मेरी माए जिहा लिखिया तिहा पाया जिहा प्रभ कमाया तन सरंदा सच्चा पातशाह हो जिन जगत अंदै लाया साहिब सिमरो मेरे पाई हो सबना हो पयाना एथे तंदा कूड़ा चार दिहाया गै सर पर जाना आगे सर पर जाना जो मेहमाना काहे गर्भ कीजै जित सेवे है दरगह सुख पाई है नाम तसै का लीजै आगे हुक्म न चलै मूले सिर सिर क्या विहाना साहिब सिमरो मेरे पाई हो सब ना हो पयाना जो तिस पावै समर्थ सोथी है हीलड़ा हो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सृजनहारो साचा सृजनहारो अलख्या पारो ताका अंत न पाया आया तिनका सबल भया है एक मन जिनी तिहाया टाहे टाहे ओ सारे आपे हुक्म सवारन हारो जो तिस पावै समर्थ सोथी है हीलड़ा हो संसारो नानक रुना बाबा जानिया जे रोवै लाए प्यारो वाले वे कारण बाबा रोई है रोवन सगल बेकारो रोवन सगल बेकारो गाफल संसारो माया कारण रोवै चंगा मंदा के सूजै नाही ओ तने वै खोवै एथे आया सब को जासी कूड़ करो अहंकारो नानक रुना बाबा जानिए जे रोवै लाए प्यारो वढ़ंस महला पहला
ਆਵਾਉ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ। ਰੋਵੈ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪੇ ਉਥੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨਹੀ ਲੀਆ ਹੋਵਾ ਤਸੈ ਕਾ ਪਾਣਾ। ਜੋ ਤਿਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇਹਾ। ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਐਸਾ ਕੋਏ। ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆ ਗਏ ਹੋਏ। ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੋ ਆ ਗਏ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ। ਭੇਟੈ ਸਿਉਂ ਜਾਵੋ।

मरण मुनसा सूर्या हक है, जो हुए मरण परवानो, सूर्य से ही अग आखी है, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु पागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेखे साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेखे आपे बूझे, आपे हुक्म पछाणे, जिन किश किया सोई जाने, ताका रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है एहो संसारो, वडहंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लख्या पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान, गुरबिन कोरिया दारो, सूरज चंद सिरजियान, अहनिसो चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू, सचड़ा देह प्यारो, रहाओ, तुद सिरजनी मेदनी, तुद सिर जी मेदनी, दुख सुख देवन हारो, नारी पुरख सिरजिया, बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया, देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया, सच निवेण नहारो, आवागमन सिरजिया, तू थिर करना हारो, जमन मरना आए गया, बदक जियो बिकारो, पूंडड़ै नाम विसारिया, बूढ़ड़ै क्या तिचारो, गुण छोड़ बिखलदया, अवगुण का वण जारो, सदड़े आए तना जानिया, हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया, विछड़िया मेल नहारो, रूप ना जाने सोहनी है, हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी, तो नहेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सच्चा है, हंस गया गैनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मर माइये, महल रुनी दरबारे, रवो कंत महलिहो, सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया, कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया, पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया, त्रिग जीवन संसारे, जीवत मरै सो जानिए, फिर सचड़ै हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो, झूठ मुठी संसारे, हाउ मुठड़ी तंदै तावनिया, फिर छोड़ियाड़ी विदन कारे, कर कर कंत महेलिया, रूड़ै हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना, हौ रै सियाड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया, सा तन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो, सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी, सच सवारन हारो, गावो गीत न बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो, वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया, सो साहिब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पाली है, कड़कड़ शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो, दूर ना जानो, जिन एह रचना राची, नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नाम है बिड़काची, जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कहे वखाणो, जिन जग थाप वताया जालो, सो साहे परवानो, बाबा आया है उठ चलना, अद पंद है संसारो वा, सिर सिर सचड़ै लिखिया, दुख सुख पर्व विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया, सो निबह जी ना ले, जेहे कर्म कराए करता, दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंदे बांदी, कर हुक्म छड़ावन हारो, आज कल कर दिया काल ब्यापै, दूजे पाए विकारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई, उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेप तो लाइया, ना भोजन प्रकारो वा,
ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਮਨ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਪਾਰੋ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत उपाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यार।

ज्ञान रतन काट चानन होवा नानक नाम प्यारो सचड़ा आप जगत उपाया गुरबिन कोर अंधारो। वड़हंस महला तीजा एहो शरीर जजरी है इसनों जर पहुंचा आए गुर राखे से उबरे होर मर जमै आवै जाए होर मर जमै आवै जावै अंत गए पछतावै बिन नामै सुख ना होई ऐथै कमावै सो फल पावै मनमुख है पत खोई। जमपुर कोर अंधार महागुबार नाथ थै पैण ना पाई एहो शरीर जजरी है इसनो जर पहुंचै आई। काया कंचन ता थी जा सतगुर ले मिलाए भ्रम माया विचों कटी है सचड़ै नाम समाए सच्चै नाम समाए हर गुण गाए मिल प्रीतम सुख पाए सदा आनंद रह दिन राती विचों हो मैं जाए। जिनी पुरखी हर नाम चित लाया तिनकै हौं लागो पाए काया कंचन ता थीऐ जा सतगुर ले मिलाए सो सच्चा सच सा लाहीऐ जे सतगुर दे बुझाए बिन सतगुर परम भुलाणिया क्या मोह देसन आग्या जाए क्या देन मोह जाए अवगुण पछताए दुखो दुख कमाए नाम रतिया से रंग चलूला पिरकै अंक समाए। तिस जेवड़िया वर ना सूझई किस आग्या कहिया जाए सो सच्चा सच सा लाहीऐ जे सतगुर दे बुझाए। जिनी सचड़ा सच सा लाहिया हौं तिन लागो पाए से जन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाए तिन मिलिया मल सब जाए सच्चै सरन आए सच्चै सहज सुभाए नाम निरंजन अगम्या गोचर सतगुर दिया बुझाए। आंदन भगत करै रंग राते नानक सच समाए जिनी सचड़ा सच त्याया हौं तिनकै लागो पाए। वडहंस की वार महला चौथा लला बह लीमा की धुन गावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा। शब्द रते वडहंस है सच नाम उर तार सच संग्रह सद सच रह सच्चै नाम प्यार। सदा निर्मल मैल न लगई नदर कीती करतार नानक हौं तिन कै बलिहारनै जो अंदन जपै मुरार। महला तीजा मैं जानिया वडहंस है ता मैं किया संग जे जाना बग बपड़ा ता जन्म ना देंदी अंग। महला तीजा हंसा वेख तरंदिया बगा पे आया चाओ डुब मोए बग बपड़े सिर तले उपर पाओ पौड़ी। तू आपे ही आप है आप कारण किया तू आपे आप निरंकार है कोई अवर ना बिया तू करण कारण समरथ है तू करे सोथिया। तू अणमंगया दान देवना सब ना हां जिया सब आखो सतगुर वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया। श्लोक महला तीजा पै विच सब आकार है निरपौ हर जियो सोए सतगुर सेवै हर मन वसै तिथै पौ कदे ना होए। दुश्मन दुख तिसनो नेड़ न आवै पोहे न सकै कोए गुरमुख मन विचारिया जो तिस पावै सो होए। नानक आपे ही पत रख सी कार्ज सवारे सोए। महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रेंदे पी फुन जाहे जिनी सतगुर ना सेवो से आए गए पछताहे। नानक सच रते से ना विछड़ै सतगुर सेव समाहे पौड़ी। तिस मिलिया सतगुर सज्जन जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीत मैं जिन हम मैं विचो मारी। सो सतगुर पूरा तन तन है जिन हर उपदेश दे सब सिरट सवारी नित जपियो संतो राम नाम पौजल बिखतारी गुरपूरै हर उपदेशया।

त्रिग जीवन त्रिगवास अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिख रास बिख खाना बिख पहनना बिख के मुख गिरास ऐथे दुखो दुख कमावना मुया नरक निवास मन मुख मेह मैले शब्द ना जाननी काम क्रोध विनाश सतगुर का पाओ छोड़या मन अठ कम न आवै रास जंपुर बदे मारिया को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवो साध जन जिन हर हर नाम दृढ़ाया सो सतगुर पूजो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया ते सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिलिया पुख गई पेखी पुख ना जाए दुख लगे घर घर फिरे अगे दूनी मिले सजाए अंदर सहज ना आयो सहजे ही लै खाए मन हठ जिसते मंगना लैना दुख मनाए इस पेखे थावों गिरो भला जिथों को वरसाए सबदे रते तिना सोजी पई दूजे परम भुलाए पय किरत कमावना कहना कछु ना जाए नानक ज्योत पावै से भले जिनकी पत पावै थाए महला तीजा सतगुर सेव है सदा सुख जन्म मरण दुख जाए चिंता मूल ना हो वही है चिंत वस है मन आए अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाए मैल गई मन निर्मल होवा अमृत सा तीर्थ नाए सज्जन मिले सज्जना सच्चा शब्द सुभाए कर ही परचा पाया ज्योति ज्योत मिलाए पाखंड जम काल ना छोड़ई ले जासी पत गवाए नानक नाम रते से उबरे सच्चे स्यों लिवलाए पौड़ी तित जाए बहो सत संगति जिथे हर का हर नाम बिलोई है सहजे ही हर नाम लेहो हर तत ना खोई है नित जपियो हर हर दिन सरात हर दरगह ढोई है सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक ललाट लिखोई है तिस गुर कहो सब नमस्कार करो जिन हर की हर गाल गलोई है श्लोक महला तीजा सज्जन मिले सज्जना जिन सतगुर नाल प्यार मिल प्रीतम तिनी त्याया सच्चा प्रेम प्यार मन ही ते मन मान्या गुर कह सबदया पार एह सज्जन मिले ना विछड़ै जे आ मिले करतार एक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द

प्रसाद सोरठ महला पहला कर पहला चौपदे सबना मरना आया वे छोड़ा सबना पुछो जाय सियाणिया आगे मिलन के ना जिन मेरा साहिब विसरे वडड़ी वेदन तिना पीसा लायो साचा सोए जाकी नदर सदा सुखोए रहाओ वड्डा करसा लाहना हैपी होसी सोए सबना दाता एक तू मानस दात ना होए जो तिस पावे सोथी है रन के रुने होए धरती उपर कोट गाड़ केती गई वजाए जो असमान ना मावनी तिन नक नथा पाए जे मन जाने सूलियां काहे मिठा खाहे नानक औगुण जेतड़े तेते गली जंजीर जे गुण होन ता कटिया नू से पाई से वीर अगे गए न मनिया नू मार कडो वे पीर सोरठ महला पहला कर पहला मन हाली किरसाणी करनी सरम पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस पाओ कर्म कर जमसी।

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा। हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पालो खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा। हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा। हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटों वारिया सद ही तेरे नाम विटों बल जाई रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा। हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यो रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से किते आए संसारा। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुग्ध गुबारा। आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मने अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा। गुरमुख भगत करै प्रभु पावै अंदर नाम वखाणे भगतां की सार करै आप राखै जो तेरे मन भाणे। तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कै गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा समाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ। दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावै ना बूझै विचारे निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हर नाक्स नखै बिदारे। प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो ले उबारे आप सकाओ बहु भला कर जाणै मन मुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई। राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए। सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हौ लागा तिन कह पाए। सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पहै भाई जे गुर के पाणी विच आवै अपने पाणे जो चलै भाई विछड़ चोटां खावै। बिन सतगुर सो कदे ना पावै भाई फिर पछोतावै हर के दास सुहेले भाई जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे आपे मेल मिलाई रहाओ। एहो कुटुंब सब जी के बंधन पाई परम पुला संसारा बिन गुर बंधन टूटै नाही गुरमुख मुख द्वारा। कर्म करै गुर शब्द ना पछाणै मर जन्मै वारो वारा। हौ मेरा जग पलच रहया पाई कोई न किसी केरा गुरमुख महल पायन गुण गावन निज कर होए बसेरा। ऐथै बूझै सो आप पछाणै हर प्रभ है तिसकेरा। सतगुर सदा दयाल है पाई मिण पागा क्या पाई है एक नदर कर वेखै सब उपर जेहा पाओ तेहा फल पाई है। नानक नाम वसै मने अंतर विचों आप गवाई है सोरठ महला तीजा चौथके। सच्ची भगत सतगुर ते होवै सच्ची हिरदय बाणी सतगुर सेवे सदा सुख पाए हम मैं शब्द समाणी। बिन गुर साचे भगत ना होवी होर भूली फिरै आणी मनमुख फिरै सदा दुख पावै डूब मोए विण पाणी। पाई रे सदा रहो सरनाई अपनी नजर करे पत राखै हर नामो दे वडियाई रहाओ। पूरे गुर ते आप पछाता
ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਦ ਵਸਿਆ, ਤਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰਾ। ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਜੋ ਜੁਗ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ, ਨਾਉ ਮੀਠਾ ਮਨੈ ਪਿਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਛਾਤਾ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਗ ਆਇਆ। ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਸਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣੀ ਅਗਾਇਆ। ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ। ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਮਗ ਪਛਾਣੈ, ਹਰ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲੈ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਨ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਪਤ ਪਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੋ ਤੁਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ ਭਾਈ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਬੂਝ ਪਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ

बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई, मनमुख दूजै पाए, तोह कुटै मनमुख कर्म करै पाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै ना मन रव्या पाई, साची प्रीत प्यार, सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हित अपार, आया सो प्रमाण है पाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाईऐ भाई, गुर सबदी मेलाए, सोरठ महला तीजा कर पहला, तिही गुणी त्रिपवन व्यापिया पाई, गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छुटिया पाई, पूछो ज्ञानियां जाए। मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए, हर जियो तेरे मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजै पाई, नाए विसरिया मर जाए, अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई, पवजल पार उतार, जग में लाहा हर नाम है पाई, हृदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उबरे पाई, राम नाम लिव लाए, नानक नाव बेड़ा नाव तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया, मरजन मैं रोवै ताही। प्राणी सतगुर सेव सुख पाए, सतगुर सेवै ता सुख पावै, नाहे ता जाहेगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै, हरा साधना आया, संध्या तर्पण करै गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सोवट भागी, जिसनो वाह मिलाए, हर रस पी जन सदा तृप्ता से, विचों वाप गवाए। एहो जग अंधा सब अंध कमावै, बिन गुर मग न पाए, नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै, करै अंदर सच पाए। सोरठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे।

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सै सुमानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा के बिख कटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरण ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक ना वरते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गात्मा तो तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखियन दा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन शरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम।

आपे लेखने आप लिखारी आपे लेख लिखाहा मेरे मन जप राम नाम यो महा अनजन अनद होवै वडभागी लै गुर पूरै हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा बने आपे गऊ चराहा आपे सावल सुंदरा प्यारा आपे वंश वजाहा कुवलिया पीड़िया मराइंदा प्यारा कर बालक रूप चाहा। आप अखाड़ा पाइंदा प्यारा कर वेखै आप चुजाहा कर बालक रूपो पाइंदा प्यारा चंडूर कंस के समाराहा। आपे ही बल आप है प्यारा बल भन्नै मूर्ख मुगदाहा सब आपे जगतो पाइंदा प्यारा वस आपे जुगत हथाहा। गल जेवड़ी आपे पाइंदा प्यारा ज्यों प्रभ खिंचै त्यों जाहा जो गर्बै सो पचसी प्यारे जप नानक भगत समाहा। सोरठ महला चौथा दो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मनमुख कर्म करे हंकारी साधु परसत ही प्रपाया गोविंद शरण तुम्हारी। गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सत्संग पए साधु जन हृदय मिलिया सांत मुरारी रहाओ। तू हृदय गुप्त वसै दिन राती तेरा पाओ न बुझै गवारी सतगुर पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास पया सांत आई। दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सत्संगत पुरख तुम्हारी पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिन कौ कृपा पही तुम्हारी। नानक क्या तोल सहज सुख पाया आंदन जागत रह बनवारी। सोरठ महला चौथा हर स्यो प्रीत अंतर मन बेदया हर बिन रहन न जाई ज्यो मछली बिन नीरै बिन सै त्यो नामै बिन मर जाई। मेरे प्रभ कृपा जल देवो हर नाई हाँ अंतर नाम मंगा दिन राती नाम ही सांत पाई रहाओ। ज्यो चात्रक जल बिन बिललावै बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया पाए सुबाई। मनमुख भूखे दै दिस डोलै बिन नामै दुख पाई जन्म रै फिर जोनी आवै दरगै मिलै सजाई। कृपा करै ता हर गुण गावै हर रस अंतर पाई नानक दीन दयाल पए है तृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा अचर चरै ता सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई प्रेम के सर लागे तन पीतर ता भ्रम काटिया।

कोई प्रभ जाना, जिसनो देसो पाए वस्तानूप अतगमा गोचर गुरपूरा लख लखाए, जिन ए चाखी सोई जाना गुंगे की मठियाई, रतन लुकाया लुकै नाही जे को रखै लुकाई, सब किश तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करै सो पाए जन नानक अवर ना कोई। सोरठ महला पंजवां कर पहला ते तुके एको अंकार सतगुर प्रसाद, किस हों जाची किस आरादी जा सब को कीता होसी, जो जो दिसै वड़ा वडेरा सो सो खाकूरल सी, निरपौ निरंकार पव खंडनो सब सुख नमने देसी, हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सालाही, क्या तिसका मोहताजा रहाओ, जिन हर त्याया सब के तिसका तिसकी भूख गवाई, ऐसा तन दिया सुखदात है निखुट न कभी जाई, अनंद भया सुख सह समाने सतगुर मेल मिलाई, मन नाम जप नाम आराध आनदन नाम वखाणी, उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी, जिन कहो कृपाल होवा प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी, कीमत कौन करै प्रभ तेरी तू सर्ब जिया दयाला, सब किश कीता तेरा वरतै क्या हम बाल गोपाला, राख ले हो नानक जन तुमरा जो पिता पूत कृपाला, सोरठ महला पंजवां कर पहला चौतुके गुरु गोविंद सलाहिए पाई, मन तन हिरदय तार साचा साहिब मन वसै पाई, एहा करनी सार, जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए शार, साध संगत को वारिया पाई जिन एक अंकार आधार, सोई साचा राधना पाई जिसते सब किश होए, गुरपूरै जानाया पाई तिस बिन अवर ना कोए रहाओ, नाम विहुणे पच मोए पाई गणत ना जाए गणी, विण सच सोच ना पाईए पाई साचा अगम तनी, आवण जान न चुकई पाई झूठी दुनी मणी, गुरमुख कोट उधार दा पाई दे नाम एक कणी, सिमरत शास्त्र सोधया पाई विण सतगुर परम ना जाए, अनक कर्म कर थाकिया पाई फिर बंधन पाए, चारे कुंडा सोधिया पाई विण सतगुर नाही जाए, वडभागी गुर पाया पाई हर हर नाम ते आए, सच सदा है निर्मला पाई निर्मल साचे सोए, नदर करे जिसे अपनी पाई तिस प्राप्त होए, कोट मदे जन पाईए पाई विरला कोई कोए, नानक रता सच नाम पाई सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवां दो तुके जाओ लाओ पाओ अपाओ एहो माने, ताओ लाओ मिलन दूराई आने अपना करत बिचारा, ताओ लो बीच बिखाई माधवे ऐसी देह बुझाई, सेवो साध गहो ओठ चरना न बिसरै मोहत छसाई रहाओ, अरे मन मुगद्या चेत चंचल चेत तुम ऐसी हृदय ना आई, प्राण पत त्याग अंतू रचिया उर्ज्यो संग बैराई, सोग ना व्यापै आप ना थापै साध संगत बुद्ध पाई, सागत का बकना इउ जानो जैसे पवन चुलाई, कोट परादा शादे ओहे मानो कहना कछु ना जाई, जन नानक दीन सरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवां पुत्र कलतर लोक ग्रह बंता, माया सन बंदे ही
अंत की बार को खरा ना होसी, सब मिथ्या असनेही, रे नर काहे पपोरो देही। उड़ जाए गो तून बादरो, एक पाजो राम स्नेही, रहाओ तीन संगिया कर देही कीनी। जल कूकर पस में ही होए अमरो ग्रह में बैठा, करण कारण बिसरोही। अनक पांत कर मणिये साजे, काचे ताग परोही। टूट जाए गो सूत पापरे, फिर पाछे पछतोही। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे, तिस ध्यावो दिन रह नेही। जन नानक प्रभ कृपा धारी, मैं सतगुर ओट गहे ही। सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा पेटियो वडभागी। मने भया परगासा, कोय ना पहुंचन हारा दूजा। अपने साहिब का परवासा, अपने सतगुर कै बलिहार। आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे रहाओ। अंतर जामी करण हारा, सोई खसम हमारा। निरपो पय गुर चरणी लागे, एक राम नाम आधारा। सफल दर्शन अकाल मूर्त, प्रभ है पी हो बनहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वडे आई अचरज शोभा, कार्ज आया रासे। नानक कौ गुरपुरा भेटियो, सगले दुख बिनासे। सोरठ महला पंजवा, सुखिए कौ पेखे सब सुखिया। रोगी कै भाणे सब रोगी, करण करावन हार स्वामी। अपन हाथ संजोगी मन मेरे, जिने अपना भरम गवाता। तिसकै भाणे कोय न भूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता। रहाओ संत संग जाका मन शीतल, ओह जाने सगली ठंडी। हाँ मैं रोग जाका मन व्यापत, ओह जन्म मरै बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया, ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरै सूझस नाही, बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक एह।

हर जन को ही सुहावे, पेख निकट कर सेवा सतगुरु, हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ। अमलन स्यो अमली लपटायो, पूमन पूम प्यारी, खीर संग बार कह लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या मैं विद्यंसी रचिया, नैन देख सुख पावे, जैसे रसना साध लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गावे। जैसी पूख तैसी का पूरक, सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलिया अंतर जामी। सोरठ महला पंजवा, हम मैले तुम यूजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर देसा रहाओ। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेरवाना। तुम करो भला हम पलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम एह हवाला, राख संतन कै पाछे। सोरठ महला पंजवा, कर दूजा। मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे, तह तुम रखन हारे, पावक सागर अथाह लहर मैं तारो तारन हारे। माधव तू ठाकुर सिर मोरा, इहा उहा तुहारो तुहरा रहाओ। कीते कहो मेरे सम्मान, करन हार तरन जान, तू दाता मांगन कहो सगली, दान दे प्रभ पान। खिन मैं अवर खिन मैं अवरा, अचरज चलत तुम्हारे, रूडो गूडो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद भया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बने आई, पूर्व लिखिया पाई, एहो मन तेरा पाई रहाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का तोखा, धर्म राय अब कहां करे गो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भय सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यो मन मानिया, रंग रते बिस्मादे। सोरठ महला पंजवा, जेती

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर्विद जाने ताकि कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृत कौ पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पय स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ता की कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा। मन बाँथ

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ अवतराया कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया प्रभ काटिया जम का फासा मन पूर्ण होई आसा जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे ताप छोड़ गया परवारे गुरपूरा है राखी सरन सचे की ताकी परमेसर आप हुआ रखवाला सांत सहज सुखन मैं उपजे मन

इतन सगली बात सवारी, प्रभ अपना बिरद संभारिया, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया। गुर का शब्द भयो साखी, इतन सगली लाज राखी, बोलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गहेरा। चप नानक नाम सच साखी, अपने दास की पैज राखी। सोरठ महला पंजवां, विच करता पुरख खलोवा, वाल ना विंगा होवा। मज्जन गुरे आंदा रासे, जप हर हर किलग खनासे। संतो रामदास सरोवर निका, जो नावे सो कुल तरावे, उदार हुआ है जी का रहाओ। जय जयकार जग गावे, मन चिंदे अड़े फल पावे। सही सलामत नाए आए, अपना प्रभु ते आए। संत सरोवर नावे, सो जन परम गत पावे। मरे न आवे जाई, हर हर नाम ते आई। एहो ब्रह्म विचार सो जाने, जिस दयाल होए भगवान। बाबा नानक प्रभ सरनाई, सब चिंता गणत मिटाई। सोरठ महला पंजवां, पार ब्रह्म निबाही पूरी, काई बात न रहिया ऊरी। गुर चरण लाए निस्तारे, हर हर नाम सुमारे। अपने दास का सदा रखवाला, कर कृपा अपने कर राखे। मात पिता ज्यो पाला रहाओ, फटभागी सतगुर पाया। जिन जम का पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा। जप जीवै से वटभागा, हर अमृत बाणी गावै। साधा की धूरी नावै, अपना नाम आपे दिया। प्रभ करण हार रख लिया, हर दर्शन प्राण आधारा। एहो पूर्ण बिमल बिचारा, कर कृपा अंतर जामी। दास नानक शरण स्वामी। सोरठ महला पंजवां, गुरपूरे चरनी लाया, हर संग सहाई पाया। जय जाइए तहां सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चिंदे सगले फल पावो। जी कै संग सहाई रहाओ, नारायण प्राण आधारा। हम संत जनारे नारा, पतत पुनीत कर लीने। कर कृपा हर जस दीने, पार ब्रह्म करे प्रतपाला। सद जी संग रखवाला, हर दिन रहन कीर्तन गाइए। बहुना जोनी पाइए, जिस देवे पुरख बिदाता। हर रस्ते नहीं जाता, जम कंकर नेड़ ना आया। सुख नानक सरणी पाया, सोरठ महला पंजवां। गुरपूरे कीती पूरी, प्रभ रव रहया परपूरी। खेम कुशल पया इस नाना।

मिल साधु दुर्मत होए पद तपुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाइय साध संग मिल त्याई मन बाइत फल पाए गुरपुरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभु अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर देश सिधायो हुन नहीं संदेशरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरक पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो।

जैसा बाल को पाए सुभाई लख अपराध कमावे कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब जाने ता किस पे आग सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भावे पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा दुख कले सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे जग जीवन

करतै पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया। तोट ना कतहूं आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै। सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला। जय जय कार गुसाई, जिन पूरी बणत बनाई। तू पारो स्वामी मोरा, एहो पुन पदार्थ तेरा जाना।

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवां, ऐथै उथै रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुभाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सा सा सुमाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरणाई, सोरठ महला पंजवां, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावे, बिरथी आस ना जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पदाता, सोई संत गुण गावे, प्रेम भगत ता का मन लीना, पार ब्रह्मन पावे, आठ पहर हर का जस रमणा, बखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरा करतै, संत साध पए साथी, कर कहली ने सरबस दीने, आपे आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवां, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगले नशारी, इस आगे को ना टिके बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एह पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरै पूरी कीनी, बख्श अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावै पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरा आराधे, कार्ज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी, सोरठ महला पंजवां, भूखे खावत ला, भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज को क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यो कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यो माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवां, सुख सांद घर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाणै, दास बाणी ब्रह्म वखाणै, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई, सोरठ महला पंजवां, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपूरै लै तारे, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ, हर नाम हृदय उर तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपूरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया, सोरठ महला पंजवां,
ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰਾ, ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੈ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੇ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰੇ ਸਗਲੇ, ਦਾਸ ਕਉ ਸਮਤ ਦਿੱਤੀ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਫਿਰ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਏ, ਜਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੋ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਉ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ, ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰਿ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੱਖੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਤ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਸ ਚੱਖ।

जो जन भजन करे प्रभ तेरा तसै अंदेसा नाही, सतगुर चरण लगे पौ मिटिया, हर गुण गाए मन माही, सुख सहज आनंद घनेरे, सतगुर दिया दिलासा, जिन घर आए सोभा सेती, पूर्ण होई आसा, पूरा गुर पूरी मत जां की, पूर्ण प्रभ के कामा, गुरचरणी लाग तरियो पव सागर, जप नानक हर हर नामा, सोरठ महला पंजवां, पयो किरपाल दीन दुख पंजन, आपे सब ठाती, खिन मैं राख लियो जन अपना, गुरपूरै बेड़ी काटी, मेरे मन गुरु गोविंद सद त्याई है, सगल कलेस मिटै इस अंते, मन चिंदिया फल पाई है रहाओ, जेते जी जंत जाके सब कीने, प्रभु उच्चा अगम अपारा, साध संग नानक नाम ते आया, मुख उज्जल पए दरबारा, सोरठ महला पंजवा, सिमरो अपना साई, दिन सरैन सत्याई, हाथ दे जन राखे, हर नाम महाराज चाखे, अपने गुरु उपर कुर्बान, भय किरपाल पूर्ण प्रभ दाते, जी होए मेहरबान रहाओ, नानक जन सरनाई, जिन पूर्ण पैज रखाई, सगले दुख मिटाई, सुख पुंचाओ मेरे पाई, सोरठ महला पंजवा, सुनो बिनंती ठाकुर मेरे, जी जंत तेरे तारे, राख पैज

आओ सुनी पुकार सम्राट स्वामी बंधन काट सवारे तहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पारे उतारे।

आओ बैठ आदर सब थाई ऊ न कतहू बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एको अंकार सतगुर प्रसाद हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वरगाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो पर्यो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जाते अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत तन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहीं उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जय सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उर तारो रहाओ अटल भयो त्रुजा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहा लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरै पारा

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ताकै सम नाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यान कौतावत कह बिदरो कौता है रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सोनो निमख ना ही ये बसावै। पर तन पर धारा सिंह रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा अरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कश बिगड़ो नाहन पजले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागेओ दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे। जब ही निरतन देखियो नरकओ संग छाड़ सब भागे।

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूडो रूडो आखिए पाई, रूडो लाल चलूल, जे मन हर स्यों बैरागिए पाई, दर कर साच या पूल। पातालिया कास तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुढ़े तेहे। गुर बिन अलख ना लखिए पाई, जग बुढ़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याइया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, ब्रह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हरनाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो, हरनाक समार पजाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी एह तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगता नु जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद्ध सब भगता चरणी लागी, गुर कै सह सुबाई। मन मुखा नु प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हृदय शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका या लाओ, भगता विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हौ मैं मार मन सामने समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब का ईश्वर नहारा। ओना की रीस करे सो विगुचे, जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे करे ना पाया, मनमुख पौंक मोए बिललाई। आवे जावे ठौर ना पावे, दुख में दुख समाई, गुरमुख होवे सो अमृत पीवे, सहजे साज समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े, जे अनेक कर्म करे अधकाई, वेद पढ़े ते वाद वखाणे, बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटे गुर सरनाई। जिन हर मन वसिया से दर साचे सचियारा, ओना दी सोभा जुग जुग होई, कोई न मिटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहार, जिन हर राखिया उर तारा, सोरठ महला तीजा दो तुकी। निगुणिया नो आपे बख्शले पाई, सतगुर की सेवा लाए। सतगुर की सेवा उत्तम है पाई, राम नाम चित लाए, हर जियो वापे बख्श में लाए। गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर लेर लाए रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे,
ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆਨ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੈ ਚਾੜ ਮਨੂਰੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸਿਆ ਭਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਤਿਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ ਗੁਰਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰ ਭਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਪਉ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪਉ ਕਰਨੀ ਸਚਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਤਿਨਕੈ ਹਉ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜਨਮ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਕੁਲਪੀ ਲਈ ਬਖਸਾਏ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਤਿਸ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਜੀਓ ਸਬਦੇ ਜਾਪਦਾ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੁਹਾਗਣੀ ਪਾਈ ਆਂਦਣ ਰਤੀਆ ਰੰਗ ਲਾਏ

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस सियाण पा प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कूण न चली नाल सतगुरु जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनों नदर करे अंदन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सेई सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंग मसादे पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहं बुद्ध बादे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहयो नगन फिरयो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मे हर स्यों संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्मया फारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह कर्मा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता पयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेयै पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमती हर हर बोले
हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लब्बई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया, दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरतै ओ पावन हारिया। हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया, श्लोक महला तीजा। हाँ मैं जल दे जल मोए, परम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए। एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए, नानक सच कमाए महला तीजा। सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान। कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे परवान है, मनमुख जन्म मराहे, नानक मोए ना आखिया जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है, हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है। हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइया, श्लोक महला तीजा। पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाई अन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मुयास। जिनी गुरमुख नाम ना चेतियो से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोका विच मोह काला होवा अंदर उबे सास, मनमुखा कोना विसही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखा नो सुख अगला जनांतर नाम निवास। महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए, दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार, मनमुख आप स्वार्थी कार्ज ना सके सवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार, पौड़ी तुदे आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया, विच हमें लेखा मंगिया फिर आवै जाया, जिन्ना हरे आप कृपा करे से गुर समझाया, बलिहारी गुरे अपने सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा माया ममता मोहनी, जिन विण दंता जग खाया मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन्नी सच नाम चित लाया बिना मैं जग कमला फिरै, गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिन्ना कौ मिलिया जिनको तुर लिख पाया। महला तीजा कर ही मैं अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया, जो कस्तूरी मृग न जाने परम दा परम पुलाया, अमृत ताज बिख संग्रह करता आप खोवाया, गुरमुख विरले सोजी पई तिन्ना अंदर ब्रह्म दिखाया, तन मन शीतल होया रसना हर साध आया, सबदे ही ना उपजै सबदे मेल मिलाया, बिन शब्द सब जग बौरना बिरथा जन्म गवाया।

वेद पुराण सब मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरे ना एक काजा भजियो नारग पत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया, भगत नार दीर दिन आई काश पूछ तंदीना, राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परे काल सब जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जै जानी, कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिरया और ना देखा,

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला।

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतऊ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुधारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंतन बेरा तेरे जी पहली जय रहाओ, छिन छिन तन छीजै जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानी हो ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की हो संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जवाले, खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तुलाई, ऊपर कौ मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लबो, एक नाव तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा, तो जन तीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ, जह चिलमिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार बिजल तही, नेरै नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर, जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुरप्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया, कर चौथा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछले नामा, का पहचान शवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दहाओ, मोको बेडी देहो बताई हो, रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उसमाई, हमारे बेडी प्राणे आधारा रहाओ, बेडी प्रीत मजूरी मांगे, जो को शान शवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो अपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो, गुंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांतु था प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आ प्यो हो, सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाज।

हम बाती जाओ तुम तीर्थ तौ हम जाति साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोरी अवर संग तोरी जह जह जाओ तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकरे और ना देवा तुमरे भजन कटे जम फासा भगत हेत गावे रवदासा जल की पीत पवन का थंबा रगत बूंद का गारा हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ राखो कंध उसारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा बंके बाल पाग सिर डेरी एहो तन होए गो।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रोपो, लो गंठ गंठ खरा बिगूचा, हम बिन गंठे जाए पहुचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पेखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

पूरे गुरु की साची बाणी, सुख मने अंतर सहि समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जले अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोए, तिसदा आनंद होवै दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम हौ मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाही कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै।

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुरबानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की कै ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगै न डोलै दृढ़ कर रहो पूर्ण होए तृपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानको निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि तृष्ण ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मह किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रपै बिनहर कहाँ आगाई। रहा हो दिन दिन करत

कामवंत कामी बहु नारी परग्रे जोहन चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एह तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बनयावै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चितना बसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन ना साको उस तां की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए चिंता जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरै कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग

चंदन लेप होत देह कौ सुख गर्दप भस्म संगीत अमृत संग नाहे रुच आवत बखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी इस युग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलविख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे ओह विश्राम निद पाई। तुम करो दया।

जा कै संग तेरे बंधन छूटै, गहो पार ब्रह्म शरण, हृदय कमल चरण, अवर आस कछ पटल ना कीजै। सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई, नानक जा को कृपा कीजै।

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ। चंदन चोवा रस भोग करता नेकै, बिखिया बेकार देखो सगल है फीके। एक गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तन तन अपन था प्यो हर जपना निमख जाप्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना, जा को रे करम पल्ला तिन उठ गई संत पल्ला। तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना, पायो रे परम निदान मिट्यो है अभिमान। एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेस लोभ मोह महापौजर तारे रहाओ। सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन दान तारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे, साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे। तनासरी महला पंजवा कार अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई। जत कत मोहे रखवाले गुर का बचन बस है।

निर्तन कौ तन अंदले कौ टेक मात दूध जैसे बाले सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा पै कृपाल दयाल गोबिंदा अमृत हृदय सिंचाई नाम ने दरिद सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई गृह बार ठाकर भगतन का रव रया सर्व ठाई रहाओ। ता को कोय न पहुंच नहारा जा कै अंग गुसाई जम की त्रास मिटै जिस सिमरत नानक नाम ते आई। तनासरी महला पंजवा दर्भवंत दर्व देह गर्भ है पूमवंत अभिमानी राजा जन सगल राज हमरा त्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमार है जैसा बेतु तैसा हुए वर्त है अपना बल नहीं हारे रहाओ। आन त्याग पय के आसर सरन सरन कर आए संतानुग्रह पय मन निर्मल नानक हर गुण गाए। तनासरी महला पंजवा जा कौ हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस तां कै जा का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरनी पावन नाम ते आवन सह समावन संग रहाओ। जन के चरण वसै मेरे ही अरे संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध नानक कै सुख एही। तनासरी महला पंजवा जतन कर मान खुडह कावे ओह अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे पेख करै निर्बन जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेखै आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटै नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दी हो अपने जाके मस्त करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन के पल से ही पूरा सहा नाम व्यवहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे माथे परोर वाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल। तुम तो रखन हार दयाल सुंदर सुगण बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन ने ऊपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राख महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला।

मन तन राम नाम हितकारे। सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे। जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहू जात। सतगुर पूरे कीनी दात। हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पही हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मने सादारी। सागत किया वरदा जाए बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी ना देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ सिओ लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवां जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगयो। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस शीज गया सब तंते प्रीतम सिव मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवां जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदयंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेसर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारै कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा।

बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। पोहप मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही खोजो पाई। बाहर पीतर को जाना, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीना, मिटे ना प्रम की काई। तनासरी महला नावा, साधो एहो जग परम पुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, ता कै रस लपटाना, जोबन तन प्रभता कै मद मैं, अहनस रह देवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, ता स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हूं, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नामा, ते जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुनो, जेह कट माहे पछाना रहाओ। पर निंदा उस्तत न जाके, कंचन लोह समानो, हरक सोग ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मान दै दिस कौ धावत, व चल जाहे ठहरानो, कौ नानक बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनास

जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डराओ, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तरो, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पस ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरध पछानो, तब हों पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां एको ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी पर पूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे, हर रस चोग चुगै प्रभावै, सरवर में हंस प्राण पत पावै, क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबै मैल ना जाए, रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी, दुबदा छोड़ पै निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे, सरवर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सह समाए, सरवर मैं हंस हंस मैं सागर, अकथ कथा गुरबचनी आदर, सुन मंडलिक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे, त्रिपवन ज्योत रहे लिव लाई, सुर नरनाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूला नाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी, भगत वछल पै काटन हारे, हमें मार मिले पगतारे, अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदा

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मनपति आए। साचे निर्मल मैल न लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज

आओ अन क्यों पाव करो माया को बचित धरो मेरी मेरी करत सद ही विहावै कोई ऐसो रे पेट संत मेरी लाह सगल चिंत ठाकर स्यो मेरा रंग लावै पड़े रे सगल बेद नह चूके मन भेद एक खेना धीर मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय संचा जे तेरे तीर्थ नाए अहम बुद्ध मैल लाए कर को ठाकरो एक तिल ना मन है कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान है सगलिया शर्म कीने मनु अन है पतीने बबेकहीन देही तोए कोई पाई है रे पुरख विधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कही ना लेख जिस भेटिए सफल मूर्त करे सदा कीर्त गुर प्रसाद को नेत्रों पेख मन अठ जो कमावै तिल ना लेख पावै बगल जो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई तिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरभय गोबिंद सुख नानक ला दे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा रहाओ दूजा तनासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दसहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन ने साच तीर्थ मजना साच ना लागे मैल क्या मल तोई है गुणे हर परोए किसको रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आप पास परम त्यानी साच साचे पावे आनंद अंदर हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नावनो गावे गावन हार शब्द सुहावनो साला हे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावै सहज नावै बेणी ता संगम सत सते आराधे अकंकार साचा नित दे चढ़ै सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कह सब कोए केवड़े आखी हौ मूर्ख नीचा जान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा कूच कर आवै बिखला दे शब्द सच्चे गुर मेरा आखण तोटना भगत पंडारी परपुर रया सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिर जी तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फिर न सकै कोई आपे कर वेखै सिरसर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहब अगमा गोचर जीवा सच्ची नाई तुम सर अवर ना कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच में साए समाना आपो पाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडियाई गुरते पाई तू मने अंत सखाई नानक साहेब अवरना दूजा नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजनहार
अलख सरन दया जियो, एक शब्द रा वाद वधन दया जियो। दो राह चलाए हुक्म सुभाए, जन्म वा संसारा, नाम बिना नाही को बेली, बिखला दी सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म ना बूझै, हुक्म सवार नहारा। नानक साहेब सब संजापै, साचा सृजनहारा। भगत सोहै दरबार, शब्द सुहाया जियो, बोलै अमृत बाण, रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तसाए, गुर कै शब्द विकाणे, पारस परसै पारस होए, जा तेरा मन भाणे। अमरा पद पाया आप गवाया, विरला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहंदर साचै, साचे के वापारी। भूख प्यासो आथ क्यों दर जाए, सा जियो, सतगुर पूछो जाए, नाम ते आए सा जियो। सच नाम ते आई साच वाई, गुरमुख साच पछाणा, दीना ना दयाल निरंजन, अंधन नाम वखाणा। करणी कार तुरो फुरमाई, आ मुआ मन मारी, नानक नाम महारस मीठा, तृष्णा नाम निवारी। तनासरी संत महला पहला, प्रसंग मूठड़िए खबर ना पाया जियो। मस्तक लिखियाड़ा लेख, पुरब कमाया जियो, लेख ना मिटई पुरब कमाया, क्या जाना क्या होसी। गुणिया चार

हमरा मन तानो राम को नामा, राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बेदन खेद राम नाम लेही, गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से पाई, 12 जो जन शत्र चल था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्भाषा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, 10 बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, 70 दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया ने लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देव बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नाम में मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक मना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा, रहाओ।

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुन रे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाऊं, नाम तेरा तुही चवर टोलारे, दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दो कृष्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ, संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कुल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे, कर्म कर कलंक मफीट सरी, बिसव का दीपक स्वामी तांचे रे स्वार्थी, पंखी राय गरड़ तांचे बाधवा, कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी, तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पारदी, कर्म कर कपाल मफीट सरी, अमृत ससी तेन लक्ष्मी, कल्प तार शिखर सुनागर नदी चे नाथं, कर्म कर खार मफीट सरी, दादी ले लंका गाड़, ओपाड़ी ले रावण बाण, साल बिसाले आन तोखी ले हरी, कर्म कर कशौटी मफीट सरी, पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन, ताचे मोहे जापी आले राम चे रामं, बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन, धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति, मंगला हर मंगला नित मंगल, राजा राम राय को रहाओ, उत्तम दियारा निर्मल बाती, तुही निरंजन कमला पाती, रामा भगत रामानंद जाने, पूर्ण परमानंद बखाने, मदन मूर्त पैतार गोबिंदे, सैन पणै पज परमानंदे, पीपा कायो देवा कायो देवलो, कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती, काया बहु खंड खोजते नव निध पाई, ना कश आए बो ना कश जाए बो, राम की दुहाई रहाओ, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा परण वै परमतत है, सतगुरु होए लखावे, तन्ना गोपाल तेरा यारता, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज स्वार्ता रहाओ, दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो, परियां शादन निकाया, नाज मंगो सत सीका, गौ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, कर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवै मंगी, जय श्री महला चौथा, कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा ही रतन नाम हर बसिया, गुरहा तरियो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे।

मिलायो गुर साधु गुर मिलिया हीर पराखा रहाओ। मनमुख कोठी अज्ञाना देरा तिन कर तन्ना लाखा ते उजड़ भरम एगा वारी माया पुआंग बिख चाखा। हर हर साध मेलो जननी के हर साधु सरन हम राखा। हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी हम परे भाग तुम पाखा। जिह वाक्या गुण आख वखाण तुम वड्या गुंगड पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जय श्री महला चौथा हम बार कछु न जाने गत मित तेरे मूर्ख मुगदे आना। हर कृपा तार दी जय मति उत्तम कर ली जय मुगद सियाना। मेरा मन आलसिया गुलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ। गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरा ही अर मेरे प्रीतम नाम पराना। बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकर जो अमली अमल लुबाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना। तिन हम चरण सिरे वै खिन खिन जन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकर जन बिछड़िया चरी मिलाना। धन धन सतगुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुरबाना। जैत सरी महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया। हर रसक रसक फल लागबा माया पयांग ग्रस्यो है प्राणी। गुरबचनी बिस हर काढ़बा मेरा मन राम नाम रस लागबा। हर किए पतत पवित्र मिल साध गुर हर नामे हर चाखबा रहाओ। तन तन वड भाग मिलो गुर साधु मिल साधु ले उन मन लागबा। तृष्णा यगन बुझी सांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाखीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाए बा। ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाए बा। हर देहो बिमल मत गुरसाद पग सेवै हम हर मीठ लगाए बा। जन नानक रेण साध पग मांगे हर होए दयाल दिवाए बा। जैत सरी महला चौथा जिन हर हिरदय नाम ना बसेओ तिन मात की जय हर बांजा। तिन सुनी दे फिर बिन नावे ओए खप खप मोए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा। हर हर कृपाल कृपा प्रभु धारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ। हर कीर्त कलयुग पादि उत्तम हर पाइय सतगुर माजा। हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम परगाजा। दर्शन साध मिलियो वडभागी सब किल विख गए गवाजा। सतगुर साहो पाया वरदाना हर किए बहु गुण सांझा। जिन को कृपा करी जग जीवन हर उर धारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जय श्री महला चौथा सतसंगत साध पाई वडभागी मन चल तो भयो अरूड़ा। अनहत धुन वाजे नित वाजे हर अमृत धार रस लीला। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा। मेरा मन तन प्रीत लगाई सतगुरु हर मिलियो लाए च पीड़ा रहाओ। साकत बंद पय है माया बिख संचय लाए ज कीड़ा। हर कै अर्थ खर्च न साकै जमकार सह सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु बहुसरदा लाए मुख धूड़ा। हलत पलत हर शोभा पावै हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु हम साजना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध गुरमिल साधु पाखान हरियो मन मूड़ा। जय श्री महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगमा पारा जिस सिमर दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो गुर मिलिया सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे हर हर नाम रखो उर तारे।
ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੋ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਮਧ ਸੂਦਨ ਹਰ ਮਾਧੋ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ। ਹਰ ਹਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮਿਲੋ, ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਰਾਮ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰ ਮਿਲੋ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ। ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਦਿਰਡਾਵੋ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਮਾ ਹਾ ਰਾਮ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆਲ ਧਿਆਹਾ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਹਾ। ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਘੂਮਰ ਪਾਵੋ, ਮਿਲ ਸਤਸੰਗ ਉਮਾ ਹਾ ਰਾਮ। ਆਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਹਾ, ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾਹਾ। ਹਰ ਹਰ

जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपव ताड़ी लाहा, आपे ही आप आवर्त है, आपे नाम्यो महाराम, आपे दीप लोभ दीपाहा, आपे सतगुर समुद मथाहा, आपे मथ मत कढ़ाए, जप नाम रतन यो महाराम, सखी मिलाओ मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम्यो महाराम, आपे वरदाना वरसाहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा, हर हर दात करो प्रभाव, गुण नानक नाम्यो महाराम, जैत सरी महला चौथा, मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वे साहा, हर हर कृपा धार मधसूदन, मिल सत संग यो महाराम, हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा, गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जपियो महाराम, सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम न पुजै पुजाहा, हर हर अतुल तोलियत पारी, गुरमत जपियो महाराम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किल विख मैल पाप तोवाहा, दीन दयाल हो जन उपर, देहो नानक नाम्यो महाराम। जैत सरी।

बेसुमार बेअंत बढ़ दाता मने गही रहो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभ को जैत सरी महला पंजवा लोड़ इंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहंग छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड़ भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल अर महाजंजाला छुटके जमै डरा आयो दुख हरण शरण करना पत गहयो चरण आसरा नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याद ना काई रहाओ दिसै सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन्माई एकै रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई तिनकै संग नानक निस्तरी जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमलिया नूप अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काड लिहो नानक अपने को संसार पाव के कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जान

मन तन निर्मल करत के आरो हर सिंचै सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवों तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे हैं आने पावना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे हैं चरण कमल नानक आराधै तिस बिन आन ना के हैं जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठकौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कहन ना जाई कुदरत कमन हमारी लाए लय लड़ दास जन अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर देह अंध कूपते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या परनी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवै पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिघन बिनसै हर सेवा निश्चल गोविंद ताम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूलियो मन माया उरजायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन खोजन को तायो रतन राम कढ़ी के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जय श्री महला नावा हर जू राख लियो पत मेरी जम को त्रास पयो उरे अंतर सरन गही कृपा निज तेरी रहाओ महापतत मुग्ध लोभी फोनो करत पाप अबहारा पै मरबे को बिसरत नाहनो तह चिंता तन जारा किए उपाव।

नाहन गुण नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब कीजै। नानक हार पर्यो शरणागत अपह दान प्रभ दीजै। जय श्री महला नावा मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो यो संसारा रहाओ। जाको जोगी खोज तहारे पायो नाहे तह पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेखते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबू नाए संभारा नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अंधन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। शंत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिल की नाती रीजै। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रक जवैत संतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया। यार वे प्रे हब्बे सखिया मुंह कही ना जेहिया। यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस चितेहिया। हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा। तना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुणतासा। जिन्नी मैंडा लाल रिजाया हौ तिस आग्या मन डेहिया। नानक कह सुन बिनो सुहागण मुंह दस दिखा पिर केहिया। यार वे प्रे अपन पाणा किस नी सी छंदा। यार वे तै रव्या लालन मुंह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने। बहा पकड़ ठाकर हौ किदी गुण अवगुण ना पिछाने। गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किछ सुहंदा। जन नानक तन सुहागण साई जे संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी सा मैं पाई वर लोड़ींदा आया वजी वादाई। महामंगल रहस्थिया पिर दयाल सद नवरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सतसंगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। जय श्री महला पंजवा कर दूजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। ऊंचा अगमा पार प्रभ कहन न जाया कथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ। शंत ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गणो असंख अवगण मेरिया। असंख्य अवगण खते फेरे नित प्रत सद कूली है मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी कूली है। लूक करत बेकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया। बिनवंत नानक दया तारो काट पव जल फेरिया। सलोक निरत ना पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ। नानकी बेनंतिया मिलैन थावे थाओ। शंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइय आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है। त्याए सो प्रभ सदा अपना मनह चिंदया पाई है। तजमान मोह विकार दूजा एक स्यों लिवलाई है। अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाई है। बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाई है। सलोक अरे मनता को त्याई है सब जाके हाथ राम नाम तन संची है नानक निभ है साथ। शंत साथियड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान अंतरे आप जलथल पूर सोए। जलथल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी। पाज सरन स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोए। बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए। सलोक
ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਖ ਸਵਾਇਆ ਸ਼ੰਤ। ਅਬ ਮਨ ਛੂਟ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲ ਵਿਖ, ਬੁੱਝੀ ਤਪ ਤਿਆ ਗਾਨਿਆ। ਗੈ ਪੁਜਾਲੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਨਿਆ। ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁਖ ਜਲੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ, ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਾਧਾਣੂ ਸੰਸਾਰ ਗਰਭ ਅਟਿਆ। ਕਰਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਟਿਆ। ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਅਭਿਮਾਨ ਬੂਡੇ, ਮਰਨ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਤਾ ਇਹ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵੇ। ਪੁਜ ਦਿਵਸ ਆਏ ਲਿਖੇ ਮਾਏ, ਦੁਖ ਧਰਮ ਤੂਤੈ ਡਿਠਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ, ਹਰ ਨਾਮ ਤਨ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਉਦਮ ਕਰੈ ਅਨੇਕ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਵਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋਨਿਆ ਸੰਗ।

चरण कमल शरण आए नानके आया, दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे भजे श्री तार, कर अंग प्रभ जी तारया। हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारया। गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवा, वार श्लोका नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक आद पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनासन जगदीश्वर। पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़ साच, पूर रहे हो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सोई। सलोक अरचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन, सा सा स्मरंत नानक महायगन ना बिनासन। मुख तले पैर उपरे वसंदो कहोथड़ै थाए, नानक सो तनी क्यों विसारियो उधरे जिस दै नाए। पौड़ी रगत बिंद करन मिया अगन उदर मजहार, उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जलै, मन तन उर तार, बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे, जासै जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण, खंडन काल कलेश प्रभ सिमर नानक ने दूरन। हब रंग माण जिस संग तै स्यो लाई है नेहो, सो सहो बिंद न विसरो नानक जिन सुंदर रचिया देहो। पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया, दीने रस भोग गृह मंदिर रथ अस दिए रचपले संजोग। सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग, हर सिमरत तन महरिया लै जाए विजोग। साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग। सलोक कुटम जतन करण माया अनेक युद्ध में, हर भगत पावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै। तुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो, नानक सच्ची रीत साई से तीरत आ। पौड़ी जिस बिसरत तन पसम होए, कहते सब प्रेत खिनग्रे मैं बिसना देवही, जिन स्यो सोई हेत। कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत, जैसा बीजै सो लुणै कर्म हो खेत। अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत। सलोक कोटदान इस नानंग अनक सो दिन पवित्र तै, उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते। ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ती मुपाहे, मन वसंदड़ो।

पौड़ी कोट अगा सब नास होहे सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ जन मरण पै कटी है।

मन बिला स्वादंग रसै एकदा चनै सिमरंत नानक तेजंत बिष्टा कृम है मुंज मुच अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत नेह सो साई जय विसरै नानक सो तन खेह पौड़ी सुंदर से जनेक सुख रस भोगन पूरे गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किश नाहे विसूरे सो प्रभ चेतना आवई विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना सांत होए कित बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दैद सै त्यागंत कपट रूप माया नानका नंद रूप साध संग मैं मन साई मुख उचरा वत्ता हबे लो नानक हबा डंबर कूड़िया सुन जीवा सची सोए पौड़ी बस्ता टूटी चुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना मित्र ना इठ धन रूपहीन के साग ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना तिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना श्लोक अनक लीला राज रस रूपं छत्र चमर तख्त आसन अरे चंत मूड़े अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरंग माणिया मिठा लगड़ा मोह नानक नावे हूणिया सुंदर माया त्रोह पौड़ी सुपने सेती चेत मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया यार जा गई विहाए तंदे ताया पूर्ण पय नाकाम मोहया माया क्या बेचारा जंत जाया पुलाया सलोक बसंत स्वर्ग लोकै जिलते पृथ्वी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है कौत कोट तमासया चेतना आव सुनाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिरै देवानिया सिर लगा जमडंड ता पछतानिया बिन पूरे गुरदेव फिरै सैतानिया सलोक राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कुल गर्भतै संचंत बिखिया शलंग छिद्रंग नानक बिन हर संग न चलते पेखंदड़ो की भुल तुम्मा जिसम सोहना अडना लहंदड़ो मुल नानक साथ ना जुलई माया पौड़ी चल दया नाल ना चल सो क्यों संजी है तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजी है हर बिसरिया क्यों त्रबतावै ना मन रंजी है प्रभु छोड़ अन लागै नरक समझी है हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजी है सलोक नच राज सुख मिष्टं नच भोग रस मिष्टं नच मिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हर नानक दास मिष्टं प्रभ दर्शनं लगड़ा सोने हो मन मजाहू रतिया विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सोतनी पौड़ी हर बिन कछु ना लाग गई भगतन कौ मीठा यान सुआ सब फीकिया कर निरनौ डीठा अज्ञान परम दुख कटिया गुर भय बसीठा चरण कमल मन बेदया जो रंगम जीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिनसे सब झूठा सलोक त्यागत जलंग न जीव मीनंग न त्याग चात्रक मेघ मंडल बाण बेदांच कुरंक नादं अलबंधन कुसुम बसन चरण कमलर चंत संत नानक आना रुचते मुखडे गाऊ पलक छड़ियाना डे उचित जीवन संगम ते स्थणी हर नानक संता मित पौड़ी ज्यो मछली बिन

है। नाद कुरंकै बेदया सनमुख उठतावै, पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। सलोक चितवंत चरण कमलं सा सा सिया राधन नै बिसरंत नाम अचत, नानक आस पूर्ण परमेश्वर है। शीतला मन मजाहे पलक ना थी वै बाहरा, नानक आसड़ी निबाहे सदा पेखंदो सच धनी पौड़ी। आसावंती आस गोसाई पूरी है, मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है, देहो दर्स मन चाओ ले जाए विसूरी है। होए पवित्र शरीर चरना धूरी है, पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है। सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है, नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है। हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे, नानक सेई धन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी। सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा, पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा। हर जस लिखे बेअंत सोहै से हथा, चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा। संता संग उदार सगला दुख लथा, सलोक पावी उदूत करण हर रमण संजोग पूर्ण। गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त, कीम ना सक्का पाए सुख मिति हूं बाहरे, नानक सावेलड़ी प्रवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी। सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई, सो मूर्त भला संयोग है जित मिलै गुसाई। आठ पैर हर त्याय कह मन इच्छ पुजाई, वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण, शरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे। छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास, नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी। मेल लहो दयाल टह पै द्वारे, रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारिया। भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया, तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया। कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया। सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन, निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है। चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम, शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी। चरण कमल की ओट उधरे सगल जन, सुन प्रताप गोविंद निरप भय मन। तोट न आवै मूल संचया नाम तन, संत जना स्यों संग पाइय वड्डे पुन। आठ पहर हर त्याय हर जस नित सुन। सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन, दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप, जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी। जा प्रभ पै दयाल ना व्यापै माया, कोट अगा गए ना।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सुन माने कथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ। नाना ख्यान पुराण जसी उत्तम खट दर्शन गावे राम शंकर करोड़ ते तीस ते आयो। नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत्यो पाम। नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत भले हर राम। बैराड़ी महला चौथा मन मेर संत जना जस गायो। हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान देवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो। तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मिलायो। खिन किंचित कृपा करी जगदीसर तब हर हर हर जस त्यायो। जन नानक कौ हर भेटे स्वामी दुख हम मैं रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ। जो किश करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत् विस्थारा वि धातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे चगर चुकावे। बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोट कुटंतर के पाप सब खोवे। हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपौ निर्वैर निरंकारा। हर निकट बस्त कश नजर ना आवे हर लादा गुर विचारा। हर आपे साहु सराफ रतना हीरा हर आप की आपा सारा। नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बणजारा। बैराड़ी महला चौथा जप मानो हर निरंजन निरंकारा। सदा सदा हर सत्याई है सुखदाता जाका अंत ना पारा वारा रहाओ। अगन कुंट मैं उर्द लिव लागा हर राख है उदर मजारा। सो वैसा हर सेवो मेरे मानो हर अंत छिडावन हारा। जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन कौ करहो नमस्कारा। हर कृपा ते पाईए हर जप नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याए जो इच्छा सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर स्यों प्रीत लगाए। बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन मैं बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा किश कीमत कही ना जाए। नानक शरण तुम्हारी हर जियो पावे तवै छड़ाए। राग बैराड़ी महला पंजवा कर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद। संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ। जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम देवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई। राग तलंग महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर। अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोस कुण करतार। हक्का कबीर करीम तू बेअब परवदगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफत है दिल हेच ना दानी रहाओ।
ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸ ਤੰਗੀਰ ਆਖਰ ਬਿਅਫਤਮ ਕਸ ਨਾ ਦਾਰਦ ਚੂੰ ਸਵਦ ਤਕਬੀਰ ਸਭ ਰੋਜ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਚਿਨੀ ਅਹਵਾਲ ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੋ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਮੈਂ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ ਮੈਂ ਦਰਮਾ ਗਉ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ਤਉ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ ਮੈਂ ਦਰਮਾਗਤ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ ਰਹਾਓ ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਹਰਨਾ ਸਰਬ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚੰਦਨ ਭਗਤਾ ਜੋਤੈ ਨੇਹੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲ ਕਰਨਾ ਕੇ ਪਟ ਪਾਂਡਾ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਐਸਾ ਭਗਤ ਵਰਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿੰਦਰ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇ ਜੈ ਜਾਏ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹਉ

हर का मार्ग आखिया कहो कित बिद जाइए, हर हर तेरा नाम है हर खर्च लै जाइए। जिन गुरमुख हर आराध्या से सह वरदाने, हों सतगुर कौ सद वारिया गुर बचन समाने। तू ठाकर तू साहेबो तू है मेरा मीरा, तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी, जो तिस पावे नानका साई गल चंगी। तिलंग महला नावा काफी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चेतना है तो चेत लै। निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औध बिहात है, फूटे कट ज्यो पानी रहाओ। हर गुण काहे ना गावही मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच लाग कै न मरन पछाना। अजहू कछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निरपै पद पावै। तिलंग महला नावा जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहां गाफल सोया। जो तन उपजिया संग ही सोपी संग ना होया रहाओ। मात पिता सुत बंद जानो हित जान स्यो कीना, जियो छूट्यो जब देह ते डार अगन मैं दीना। जीवत लो व्यवहार है जग कहो तुम जानो, नानक हर गुण गाए लै सब सुफर समानो। तिलंग महला नावा हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कयो मान लै मेरो रहाओ। संपत रथ तन राज स्यो अत नेहो लगायो, काल फास जब गल परी सब पयो परायो। जान बूझ के बावरे तै काज बिगारियो, पाप करत सुखच्यो नहीं न गर्भ निवारियो। जे बिद गुरु उपदेसिया सो सुन रे पाई, नानक कहत पुकार कै गहु प्रभ शरणाई। तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बेद कतेब इफ्तरा पाई। दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जाओ करो हाजर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, एह जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी नाहे रहाओ। द्रोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बकाहे, हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूर्त नाहे। असमान म्याने लहंग दरिया गुसल कर दन बूंद, कर फकर दायम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है सक करो।

करीमा रहीमा अल्लाह तू गने हाजरा हजूर दर पेश तू मने दरियाओ तू देहंद तू बिस्यार तू तनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं बिचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सांवले बरना

दूध करम फुन सुरत समायण होए निरास जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फोन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो ता मथिये इन बदे अमृत पावो। मन संपटो जित सत सरन आवन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सरे अवर ना कोई भगतहीन नानक जन जंपै हाँ।

अंतरवसै ना बाहर जाए, अमृत छोट काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, बंधन बांधया सब जग पवै। सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। सुही महला पहला, कर सेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना। कोटम कर लड़ी मस, तोतिया झूठ ना उतरै जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़ियां पासो चितवियां हां, टठियां कम ना आवनी विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन, कुटकुट जियां खावणे बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख भुलन, से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगियाईया अवर सियाण पकित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सुही महला पहला, जप तप का बंद बेड़ला, जित लंगै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा, रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, जे गुण होवै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई, आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मारने वारिया सीता है चोला, गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा, हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सुही महला पहला, जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी, सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी, इतना मिलिया गुरे आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाउ देवे दिखिया, चल सतगुर पाए पवे ना पीखिया। जां को महला हजूर दूजे नवै किस, दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस, कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे सारे साज जाने सब सोए, नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला, पांडा हच्छा सोए जोत स्पाव सी। पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी, गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी। ये द्वारे तोए हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी। मत को जाने जाए अगे पाए सी, जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी। अमृत हर का नाउ आप वरताए सी, चलिया पत स्यों जन्म सवार। वाजा वाए सी, मानस क्या विचारा त्यो लोक सुनाए सी। नानक आपने हाल सब कुलतार सी। सुही महला पहला, जोगी होवै जोगवै, भोगी होवै खाए। तपिया होवै तप करे, तीर्थ मल मल नहाए। तेरा सदड़ा सुनी जय पाई, जे को बह अलाए रहाओ। जैसा बीजे सो लुणे, जो खट्टे सो खाए। अगे पुछ न होवई जे सणनी सण जाए। तैसो जैसा कंडिये जैसी कार कमाए, जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए।
ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਈ ਜਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡੈ ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਐ ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ਰਹਾਓ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਹ ਦਸੰਤਰ ਭਵੈ ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਤੂਟੈ ਤਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ ਨਿਜਰ ਚਰੈ ਸਹਿ ਤੁਨ ਲਾਗੈ ਕਰਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋ ਕਮਾਈਐ ਵਾਜੇ ਬਾਜੋ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਉ ਪਾਈਐ

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावै त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दी बाण तू है।

प्रगटया सूर जोत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमक्यो हियो मिलन प्रभताई खोजित चर्यो देखो प्रे जाई सुनत संदे सरो प्रे गृह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीरे निमानो मिल साजन तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सद जागंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले चागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिले सुपागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै फिर पाया सगल सिंगार हुण मुझै सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा तै फिर है भाई खोलियो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा क्या गुण तेरे।

लाल रंगीले प्रीतम मन मोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै। मेरे ठाकुर अगमे अपारे क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो बिदगित पावो दरसारे। मित नहीं पाई है

संत करे हर रंगा, तह मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा। गोहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा, जा कै दर्श पाप कोट उतारे, भेट संग एहो पव जल तारे। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे रहाओ। जा का शब्द सुनत सुख सारे, जा की टहल जमदूत बिदारे। जा की तीरक इस मने सुधारे, जा कै सिमरन मुख उजलारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, शरण नानक तिन सद बलिहारे। सूही महला पंजवा, रहन ना पावै सुर नर देवा, ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा। जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया, साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ। बाद सहा सहा वापारी मरना, जो दिसै सो कल खरना। कूड़ै मोहे लपट लपटाना, छोड़ चलिया ता फिर पछताना। किरपा निधान नानक कौ करहो दात, नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवा, घट घट।

एहो सुपना सोवत नहीं जानै, अचेत व्यवस्था मैं लपटानै रहाओ। महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊट सिधारा, ऊते ऊच ताका दरबारा, कई जंत बिनाहे उपारा। दूसर होवा ना को होई, जप नानक प्रभ एको सोई, सूही महला पंजवा, सिमर सिमर ताका हो जीवा। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सोहर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाओ। सुन सुने अमृत नाम ते आवा, आठ पहर तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुणिया पार प्रभ परमानंदा। जा कै सिमरन कछ भौ ना ब्यापै, सदा सदा नानक हर जापै। सूही महला पंजवा, गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी, रसना जाप जपो बनवारी। सफल मूर्त दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण आधारी रहाओ। साध संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करने आधारी। काम क्रोध लोभ तजारी, दृढ़ नाम दान इस नान सुचारी। कहो नानक हो तत् बिचारी, राम नाम जब पार उतारी। सूही महला पंजवा, लोभ मोहे मगन अपराधी, करनहार की सेवना सादी। पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारे, राख लियो मोहे निर्गुणियारे रहाओ। तू दाता प्रभ अंतर जामी, काची दे मानुख्य अभिमानी। स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया। दुख भंजन जग जीवन हर राया, सगल त्याग नानक सरनाया। सुही महला पंजवा, पेखत चाखत कहियत अंधा, सुनियत सुनिए नाही। निकट वस कौ जाने दूरे, पापी पाप कमाही। सो किश कर जित छुटै परानी, हर हर नाम जप अमृत बानी रहाओ। घोर महल सदा रंग राता, संग तुम्हारा कछु न जाता। रखै पोचार माटी का भांडा, अत कुचील मिलै जम डांडा। काम क्रोध लोभ मोहे बादा, महागर्त मैं निगरत जाता। नानक की अरदास सुनी जै, डूबत पाहन प्रभ मेरे लीजै। सूही महला पंजवा, जीवत मरै बुझै प्रभ सोए, तिस जन कर्म प्राप्त होए। सुन साजन इउं दुत्तर तरियै, मिल साधु हर नाम उचरियै रहाओ। एक बिना दूजा नहीं जानै, घट घट अंतर पार ब्रह्म पिछानै। जो किश करै सोई भल मानै, आदि अंत की कीमत जानै। कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कै हृदय वसै मुरारी। सूही महला पंजवा, गुर परमेसर।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम्या गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले।

घुड़सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम रहाओ। प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरतो निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट ना आवै, खात खर्चत सुख अंद विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवां, गुर पूरे जप है दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न सके तीने ताप। निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे। सूही महला पंजवां, से संजोग करो मेरे प्यारे। जित रसना हर नाम उचारे, सुन बेनती प्रभ दीन दयाला। साध गावे गुण सदा रसाला रहाओ। जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करे बसे तिस नेरा। जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सूही महला पंजवां, बहती जात कदे दृष्ट ना तारत। मिथ्या मोह बंदे नित पारच, माधवे पाज दिन नित रैणी। जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवां, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिन से, गुर पूरे मिल पाप तजायण रहाओ। जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पै जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सूही महला पंजवां, घर का काज ना जानी रूड़ा। झूठे तंदै रचियो मूड़ा।

दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंतु तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, करवास ना देवे दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई, किस दोष ना दीजै कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, घर चौथा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हार, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोबा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेहरा चलो बाए। सब किस तुमरे हाथ प्रभ, आप करे कराए। सास सास सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तानु। तिसका पनिहारा, पाई मीत सुत सगल ते, जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल, तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई। तजा मान सरणी परो, हर गुण निध पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ, बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो। नानक तो प्रभ दया कर, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवां, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड। ताहू मैं पाओ, राख लेहो एहो बिखई जियो। देहो अपना नाओ रहाओ, जाते नाही को सुखी। ता कै पाछे जाओ, छोड़ जाहे जो सगल कहो। फिर लपटाओ, करहो कृपा करना पते। तेरे हर गुण गाओ, नानक की प्रभ बेनती। साध संग समाओ, राग सुही महला पंजवां। कर पंजवां पड़ताल, एक ओंकार। सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया, मोहन लालना। जप मन गोबिंद एक, अवर नहीं को लेखै। संत लाग मने छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया। पिन पिन पिन पिन करिया, विच मन कोट वरिया। निज मंदिर प्रिया, तहा आनंद करिया। नै मरिया नै जरिया, कीर्तन जुरिया। बहुविध फिरिया, पर कौ हिरिया। बिखना किरिया, अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया, दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया, बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोगन ही हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवा, तौ मैं आया सरनी आया। भरोसै आया कृपा आया, ज्यो पावै त्यों राखो स्वामी। मार्ग गुरे पठाया रहाओ। महादुत्र माया, जैसे पवन चुलाया। सुन सुन ही डराया, कर रो त्रमराया। ग्रह अंध को पाया, पावक सगराया। गही ओढ़ साधाया, नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया, राग सुही महला पंजवा। कर सेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। सतगुर पास बेनंतियां, मिले नाम आधारा। तुठा सच्चा पात साहो, ताप गया संसारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू। सच्चा सिरजनहारा रहाओ,
ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਰੂਪਿਆ ਗਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਗਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ।

तू दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूर्ण हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा। तू अथाह अपार अति ऊंचा कोई अवर ना तेरी पत, एह अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते। दिन रहन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा।

सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर ध्याया। सुही महला पंजवा कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै। संत हो सागर पार उतरियै जे को बचन कमावै संतन का। सो गुर प्रसादी तरियै रहाओ कोट तीर्थ मजन इस नाना इस कल में मैल भरीजै। साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब शास्त इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौ वर्ण कौ सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं कड़कट नानक माजा। सूही महला पंजवा जो किश करै सोई प्रमानै। ओए राम नाम रंग राते तिनकी शोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते। मेरे राम हर संतां जीवट ना कोई भगता बने आई प्रभ अपने स्यों। जल थल मैयल सोई रहाओ कोट अपराधी संत संग उदरै। जमता कै निर्ण आवै जन्म जन्म का विछड़िया होवै तन हर स्यों आन मिलावै। माया मोह परम पौ काटै संत शरण जो आवै। जिहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावै। जन की महिमा केतक वर्णा जो प्रभु अपने पाणे। कहो नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते पए निकाणे।

तुद चित आया उभरे तेरी टेक परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंध कूप ते काल लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवां जब कछ ना सी ओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देख ठाकुर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतहू काची दे आणी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही ते आई है तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवां पाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा प्रवान गणी से ही एह आए सफल तिना के काम मेरे राम हर जन कह हम

ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां सगल त्याग।

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पहु तरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।

तिन मुख नाम न उपज दूजे व्यापे चोर जियो। मूल न बुझे अपना से पशुआ से टोर जियो। नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो। करता चेतना आवई फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दा

सच्चे की लिव उबरै बख्शे बख्शन हार जियो अन को की जय मित्रा खाक रलै मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवै जाए जियो नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान में होनिया गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो खिंचो तान में गुची है बुरा भला दोए नाल जियो बिन शब्द पैर त्या सब जो ही जमकाल जियो जिन कर कारण तारिया सब सहदे आधार जियो सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो नानक नाम ना

ओए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल न तुमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशन सेवड़ भागी जे।

जियो। नाम ते आवै सेजन चले गुरपूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया चलन हुक्म संजोग जियो। हुक्मे परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनों करता विसरै तिसे विछोड़ा सोग जियो। अपने प्रभाणिया दरगह पैंदा जाए जियो। एथे सुख मुखी उजला इको नाम ते आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म गुर सेविया सत पाए जियो। थान थनंतर रव रहया सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सच खजाना संचया एक नाम तन माल जियो। मन ते कहो ना विसरै जा आपे हुए दयाल जियो। आवन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो। ता कायंत ना पाईऐ उचा गमे अपार जियो। जिस प्रभ अपना विसरै सो मर जमै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन उठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेसर बिनसे सगल संताप जियो। तू करता तू करनहार तू है एकानेक जियो। तू समर्थ तू सर्वमय तू है बिद विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवा अष्टपदियां कर दसवा काफी एको अंकार सतगुर प्रसाद। जे भुली जे चुकी साई पी तहिंजी काढ़िया। जिन्ना नेहो दू जाने लगा चूर मरो से वाडिया। हाँ ना छोड़।

मैं तुझ ऊपर बहु मानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा वे खाल एहा पाई मुदा तड़ी नित हृदय रखा समाल पाव जुलाई पंदता नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुरथी वै कृपाल किती लख करोड़ प्रिय रोम न पुजन तेरिया तू साही हूं साहो हौ कह ना सका गुण तेरिया सहियां तऊ असंख मन्यो हब वदानिया हिक पोरी नदर निहाल देहे दर्श रंग माणिया जय डिठे मन तीरी है किल विख वंजन दूरे सो क्यों विसर माओ मैं जो रहा पर पूरे होए निमाणी टह पई मिलिया सह सुभाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाए सूही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होछिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन मरण मोह दुख

तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसै ते सूजै गुरसबदी सच जानिया साजन होवन अपने क्यों पर कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माहे साजन करै रलिया कर्म धर्म सवाया अड़सठ तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पाया आप साजे थाप वेखै तिसै पाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जेथिया क्यों पादर जाने आप मुसै मत होछिए क्यों राह पछाणे क्यों राहे जावे महल पावे अंध की मत अंधली विण नाम हर के कछ ना सूजै अंध बूढ़ो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजै शब्द गुर का मन वसै कर जोड़ गुर पै कर बिनंती राहो पादर गुर दसै मन परदेसी जे थिया सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी पर आया जगत सबाया कौन जाने बिद मेरिया आवने जावने खरे डरावने तोड़ना आवे फेरिया नाम में हुने उने चूने ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जे थिया सब देश पर आया गुर महली करे अपने सो परपुर लीना सेवक सेवा ता करे स शब्द पतीना शब्दे पतीजे अंक पीजै सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला ता सुहेला बाजंत अनहद बीना गुर महली करे अपने सो परपुर लीना कीता कैसा लाही है कर वेखै सोई ताकि कीमत ना पवे जे लोचै कोई कीमत सो पावे आप जनावे आपा भुल ना भुल जय जयकार करै तुद पावे गुर कै शब्दया मुल्लै हीणो नीच करो बेनंती साच ना छोड़ो भाई नानक जिन कर देखिया देवै मत।

मानो निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु होए दासा जीवत मरी है भौजल तरी है जे थी वह कर्म लिखिया सा गुर से बीजे अमृत पीजे जिसला वह सह त्यानो नानक शरण पया हर द्वार हों बलबल सत कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो न माना सद कुरबाना सगलाया मिटाई है ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पाया विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवां हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिसके बलराम जियो बाबल मेरा वड समर्था करण कारण प्रभारा जिस मृत दुख कोई ना लागे पौजल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदन मंतन पीवा हरे आपे लय मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जी हो जिसनो तेरी टेक सो सदा सजी वही बलराम जी हो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सृजनहारा जिसते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपुरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जी ओ सतगुर मिलिया दयाल गुण अबनासी गाया बलराम जी ओ गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जमिया सत संतोख वजह वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बिनासे सगल नानक प्रपुरख करने हारे उपजिया।

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा, नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परंपर दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बेकारे ठाकर से मन माना, प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला, कहो नानक कहो निरपा होई सो प्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन भाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे, अंतर जामी सोप्रा मेरा सर्व रया परपूरे। तां की सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ कौ बलिहार है नानक सतगुरबाणा। ऐसा गुरवट भागी पाई जित मिले प्रभ जापै राम। जन्म जन्म के किल वखे उतरे हर संत धूड़ी नित नापै राम। हर धूड़ी नाई है प्रभु ते आई है, बाहुड़ जोड़ ना आई है गुर चरणी लागे परम पौ भागे, मन चंदिया फल पाई है। हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापै, नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस परतापै। हर हरे हर गुण निधे हर संतन कै वसे आए राम, संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी, सफल जन्म होवा पौ भागा हर भेटिया एक मुरारी। जिसका सा तिन्ही मिल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया मेरे सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो पुनी इच सबाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती मरे नया वै जाई राम। अबनासी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए, सांत सहज आनंद कनेरे गुरचरणी मन लाए। पूर रहया कटकट अबनासी थान थनंतर साई, कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरचरणी मन लाई। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम। लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे मुख हरिया राधे मेरा राम। हरिया राधे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई, जल थन मयल पूर्ण स्वामी जद देखा तत सोई। परम मोह बेकार नाठे प्रभ नेर हूं ते नेरा, नानक कहो प्रभ कृपा कीजै नेत्र देख दर्श तेरा। कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटिया काल की फासी राम, कटिया जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना। हर हर जप जपिया दिन राती लागै सहिते आना, काल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी। कहो नानक प्रभ कृपा कीजै हर गुण सुनिए अबनासी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावै चरण चले प्रभ मार्ग राम, पव सागर नाव हर सेवा जो चढ़ै तिस तार ग्राम। पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे, महा बिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। मन बाहित फल पाए सगले कुदरत की मया पारग, कहो नानक प्रभ कृपा कीजै मन सदा चलै तेरे मार्ग। एहो वर एहा वडियाई एहो तन होए वडभागा राम। एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला, सब किश कीता तेरा सब किश तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकर दीन दयाला।
मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा। कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा। सोही महला पंजवां हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावै राम सिमर सिमर।

दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला दय दसपुर रहया जा स्वामी कीमत कहन ना जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीम रखाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज भगत पव पवंजन अनहद वाजे तुनिया राम अनहद चुनकारे तत विचारे संत गोष्ठ नित होवे हर नामा राधा मैल सब काटे किलवे सगले खोवे तह जन्म न मरना आवन जाना बहुन न पाइय जोनी है नानक गुर परमेसर पाया जिस प्रसाद इच पुनी है सूही महला पंजवा संता के कार्य आप खलोया हर कम करावन आया राम तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार भया जग अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेसर नानक नाम ते आया नवनिध सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दास सवाई राम दास सवाई ने खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया सात सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सवाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करे जयकारा राम गुण गाए गोविंद अंध उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्यम किया ताल के रात इसकी उपमा क्या गनी आठ साठ तीर्थ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा प्रभ करता उसत कौन करी जय राम संता की बेनती स्वामी नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइए अंदेनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मंतन अमृत पीजै बिनवंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जीजै राग सुही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हौ संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान अवगुण को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने कहले कटकट वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हां बिसम पई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी हां चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा ते जेवड़े अवर ना कोई आदि अंत मध प्रभ रव्या जलथल मई अलसोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेसर तेरा अंत ना पारा वारा हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सतगुर कहया जी साचा या गंभीचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हम बिंठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दोख ते न्यारो नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सदारो मैं खोजत खोजत जी
ਹਰ ਨਹਿ ਚਲ ਸੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸਭ ਅਧਰੁਵ ਡਿੱਠੇ ਜੀਓ ਤਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਹਉ ਤਿਸਕੀ ਦਾਸੀ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਸਭ ਪੂਰਨ ਮਨ ਚਿੰਦੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਏ ਸਰੁੱਤ ਸਿਮਰਤ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਨ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਸਵਾਮੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਕੀ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ

ऐसो बुझ सी जे सतगुर थापे, सब जग खेल रचायो नो सवरत आपे। श्लोक महला पहला। चोरा जारा डंडियां कुटनियां दी बाण, वेदीना की दोस्ती वेदीना का खान। सिफती सार ना जाननी सदा वसै सैतान, गदो चंदन खोली है पीसा हूं स्यो पान। नानक कूड़े

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जान है, ताजा मान सुख रलिया मान है, तन मन दे न अंतर रख है, अवरा देखना सुने अपख है, सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई, रहाओ दुखी दुहागन दोए पख हीनी, जे ना निरंतर भगत ना कीनी, पुरस लात का पंथ दुहेला, संगना साथी गवने अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम्पी चलना, दूर गमन सिरी ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग याना, तै जीवन जग सच कर जाना, रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब कट पीतर हाट चलावै, कर बंदगी शाड मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दिवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने, सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई, एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी, रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड सवेरा, घर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर भागी, कह रविदास सवै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरो रहो, बावल होई सो सहलो रहो, तैं सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस, तैं साहेब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी, रहाओ काली कोयल तू कितगुन काली, अपने प्रीतम के हम बिरह जाली, पिरै बिहून का तैं सुख पाए, जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए, विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली, कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली, वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बहुत पैणी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग बिलावल महला।

जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो किश होवा सब किश तुई ते, तेरी सब असनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहेब। मैं अंधले क्या चतराई, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई, जो तुध पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई, एते कुकरहों बेगाना पौका स्तंताई, भगतहीण नानक जे होएगा ता खसमै नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेस कलंदर, कठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहुड़ जन्म ना आवा।

अगम गोचर लख्य पारा चिंता करो हमारी, जल थल मैयल भरपुर लीना कड़कड़ जोत तुम्हारी। सिख मत सब तुम्हारी मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा गुण गावन तेरे। जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा। एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान। आपे कर कर वेखे तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम निरंजन देओ, हौ जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार। राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए। एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करा वैसोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मनसा चै तारिया। अवरना सूजे गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सही ध्याने, हर कै रंग रता मन माने। मनमुख परम भुले बौराने, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली। सास गिरास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए। हौ मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास। गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दासन दास। जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया। त्रिग शरीर कुटुंब सहित स्यों, जित हुण खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै, अहला जन्म गवाया। दूजा पाव ना दे लिव लागणो, जिन हर के चरण विसारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिनके तैं दुख निवारे। रहाओ तू दयाल दया पदाता, क्या ए जंत विचारे। मुक्त बंद सब तुते होए, ऐसा आख वखाणे। गुरमुख होवै सो मुक्त कही है, मनमुख बंद विचारे। सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले। तिनकी गहन गत कही ना जाई, सच्चा आप सवारे। परम पुलाणे से मनमुख कही है, नारो वार ना पारे। जिसनो नजर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द समाले। हर जन माया माहि निस्तारे, नानक भाग होवे जिस मस्तक। काले मार बिदारे, बिलावल महला तीजा। अतुल क्यों तो लिया जाए, दूजा होए ता सोजी पाए। तिसते दूजा नाही कोए, तिसदी कीमत किकू होए। गुर प्रसाद वसै मन आए, ताको जाने दुबदा जाए। रहाओ आप सराप कसवटी लाए, आपे परखे आप चलाए। आपे तोले पूरा होए, आपे जाने को सोए। माया का रूप सब तिस्ते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए। जिसनो लाए लगे तसे आए, सब सच दिखा ले ता सच समाए। आपे लिव तात है आपे, आप आप बुझाए आपे जापे। आपे सतगुरु शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवको सेव साहिब ते।
क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनया है समय एक समाना। सतगुर परचय हर नाम समाना, जिस कर्म होवे सो सतगुर पाए, अंधन लागे सही ध्याना रहाओ। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अवमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करो दिखा वखियाना। आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चलाए तवै कोई चाले, जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहेब, कौन जाने तेरे कामा, एक ना करमे दे वड़ियाई, एक परम पवे अभमाना। बिलावल महला तीजा। पूरा थाट बनाया पूरा, वेखो एक समाना, इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई, मत को तरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माए समाना, एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवे हर नामा रहाओ। चहो जुगा का हुण नबेड़ा, नर मनुखा नो एक निधाना, जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है, कल मैं कीर्त हर नामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है, सोध देखो वेद पुराना, गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए, चूकै मन अभमाना, कहत सुनत सबे सुख पावै, मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए, तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए, मंगल नारी गावै आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हाउ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाई है, हर गुण गावे सहे सुभाए रहाओ। सदा रंग राते तेरे चाए, हर जो आवसे मन आए, आपे सोभा सद ही पाए, गुरमुख मेले मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए, निकर वासा हर गुण गाए, रंग चलू लै हर रस पाए, एह रंग कदे न उतरे साज समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा, सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा, जो सच राते तन बौन ना फेरा, नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा। पूरे गुरते वड़ियाई पाई, अचिंत नाम वसिया मन आई, हाँ मैं माया शब्द जलाई, दर सच है गुरते सोभा पाई, जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरे, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ। मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को संसार वेखै, बहु न मरे न जंपे खै, कर ही मैं सब कोट निदान, सतगुर दिखाए गया अभमान, सद ही लागा सही ध्यान, अंधन गावे एको नाम। इस युग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जै देखा तरिया समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे भाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निदान दिखाया, गुर का शब्द वत मीठा लाया, नानक त्रिसन बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा, कर तीजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यो प्रेरे त्यो करना, ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हृदय हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जन अपना, ज्यो प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है, हर किए पतत पवन्ना, ओह ढोवे ढोर हाथ चम चमरे, हर उदर्यो पर्यो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो, हम पापी राख पपना, हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਸਰਨਾਗਤ ਪੁਰਖਿਆ ਜਨਮਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਖ ਲੇਵੋ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰੋ ਹਮ ਪਾਥਰਹੀਨ ਅਕਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਾਮਾ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਤਿਆਗੋ ਨਿਫਲ ਕਾਮਾ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਰ ਤਾਰੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਉਪਮਾ ਤੁਜ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਜਪਿਐ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾ ਨਾਮਹੀਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਸਹਮਾ ਓਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨ ਭਵਾਈਐ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਮੂੜਿਆ ਕਰਮਾ ਹਰ ਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਵਡਕਰਮਾ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮ ਮਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਮਰਾ ਚਿੱਤ ਲੁਭਤ ਮੋਹਿ ਬਿਖਿਆ ਬਹੁ ਦੁਰਬਤ ਮੈਲ ਪਰਾ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਾ ਸਕੈ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੁਗਧ ਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਨਰਹਰ ਨਾਮ ਨਰਹਰਾ ਜਾਨੀ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਮਿਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਰ ਪਰਾ ਰਹਾਓ ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਜਸ ਕਰਾ ਤੁਮਰਾ ਸੰਗ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਜਿਉ ਸੰਗ ਕਾਸ਼ਟ ਲੋਹ ਤਰਾ ਸਾਗਤ ਨਰ ਹੋਛੀ ਮਤ ਮਧਮ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰਾ ਤੇ ਨਰ ਭਾਗਹੀਨ ਦੋਚਾਰੀ ਓਏ ਜਨਮ ਓਏ ਫਿਰ ਮਰਾ ਜਿਨ ਕਹੋ ਤੁਮ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਨਾਏ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰਸਰਾ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਹਰ ਭਜਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਆਵੋ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਕਰੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਇਥੈ ਕਲਯੁਗ ਖੇਵਟ ਗੁਰ ਸਭ ਤਰੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ ਰਖੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਪਰੋ ਰਹਾਓ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਸੀ ਉਤਮ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਉਪਦੇ ਜਨ ਕਰੋ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪੀਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੀਠਾ ਹਰ ਸੰਤੋ ਚਾਖ ਦਿਖਾਓ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ ਤਿਨ ਬਿਸਰੇ ਸਭ ਬਿਖਰਸੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਹਰ ਸੇਵੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜੋ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਨੀ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪੂਜੋ ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਦਿਨ ਸੋ ਸਭ ਰੈਨੀ ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਸਤਗੁਰ ਨੈਨੀ ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤ ਬੈਨੀ ਰਹਾਓ ਅਨ ਕਿਉ ਪਾਵ ਚਿਤਵੀਐ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸਾ ਹੋਵੈ ਜੇ ਬਾਤ ਹੋਵੈ ਨੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬੰਛੈ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਚਿਤੈਨੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਨੀ ਮਤ ਸਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸਵਾਮੀ ਹਮ ਜੰਤ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜਨਤੈਨੀ ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਵੈ ਬੁਲੈਨੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅਨੰਦ ਮੂਲ ਧਿਆਇਓ ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਨਦਨ ਅੰਦ ਅਨੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਕਾਣ ਚੁਕਾਈ ਸਭ ਚੁਕੇ ਜਮਕੇ ਸੰਦੇ ਜਪ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਰਹਾਓ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਧਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਿਰੈ ਫਿਰੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਜੋ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਭਵੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸਭ ਟੂਟੇ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਗੋਵਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪ

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रया जल थले राम नाम नित गाइये हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवै तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरियै बिखिया संसार सतगुर बोहित पावै पार रहाओ पवन चुलारे माया।

हाँ मैं पचे दीप को देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावे, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावे। हाँ फिरो उदासी मैं करत दसाया, निर्मोल हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिस आया साध, जो गूंगा मन में मिसमाद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण अक्स माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिघन ना लागे जप अलाख्या पेव, धरत पुनीत पई गुण गाए, दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाकावड़ प्रताप। गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जम पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जाके संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मंतन आधार, बिसरत नाम हो तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा यानड़िए कै कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे। मैं मन तेरी टेक, अवर स्याण पा बिरथिया प्यारे। राखण कौ तुम एक रहाओ, सतगुर पूरा जे मिले प्यारे। सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे। जिसनो हो दयाला, सफल मूर्त गुरदेव स्वामी। सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर। सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की। जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम आराधे नाम वखाणे। हर नाम में ही मन राता, सेवक जन की सेवा मांगे। पूरे कर्म कमावा, नानक की बेनंती स्वामी। तेरे जन देखण पावा, वडभागी से काढ़िया प्यारे। संत संगत जिन्ना वासो, अमृत नाम आराधिए निर्मल। मने होवे परगासो, जन्म मरण दुख काटिए प्यारे। चूके जमकी काने, तना प्राप दर्शन नानक। जो प्रभ अपने पाने, ऊंच या पार।

तरे सागर जेत मार्ग पायो ध्यान मैं गुर दसे पेत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठत सोबते हर हर हर चेत रहाओ। पंच चोर आगे पगे जब साध संगेत पूंजी साबत कणो लाभ ग्रह शोभा सेत। निहचल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत परम भुलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिया केत नानक पाया साध संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवां बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब प्रम मिटे गत पई हमारी। जा दिन पेटे साध मोहे उवा दिन बलिहारी तन मन अपनो जियारा फिर फिराओ वारी। रहाओ एत छिडाई मोहे ते इतनी दृढ़ तारी सगल रेन एहो मन पया बिनसी अपतारी। निंद चिंद पर दुखना ए खिन में जारी दया मया अर निकट पेख नाही दूरारी। तन मन शीतल पय अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तहनो नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवां टहल करो तेरे दास की पग चारो बाल मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयालो निस्बासर मन अंध हो तो चिरवत कृपाल। रहाओ जगते उदाहरण साध प्रभ तिन लागो पाल मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। उक्त सियाणप कछ नहीं नाही कछ काल।

गावत प्रभ नाम सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौ नाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। साज जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जोसदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सात सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम्हें अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो, पार ब्रह्म गुरुदेव सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा कावड़ प्रताप। दोख हमारे बख्शिया नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौप दे दुप दे कर शेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवणी यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तले तले सब ऊपर एह दृष्ट दृष्टाए। अभिमान खोए खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नह तुलिए भगत वच्छल कृपाए, जो जो शरण पर्यो गुरु नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरा परिवार। जो तुम करहो सोई पल हमर, पेख नानक सुख चरणार। बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने विसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मनते डारन, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काट लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर के बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिन से कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाया गुर सृजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजवा। चौपदे दोपदे कर सतवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पए जौ पेखियो कहन न जाए वड़ियाई। मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रयापारा। एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जहां से ओ राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है। उर्ज रहे हो इंद्री रस प्रेरे हो बिखै ठगौरी खावत है। तिरण को मंदिर साज सवार हो पावक तलै जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है। दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहे हो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जोफा हावत है। कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम या पारिया मोली प्राण प्यारो मन अधारो। चीत चितवो जैसे पांत बोली। रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जौ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कहो नानक प्रेरवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा। गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते पेटे सा दयारा तब ते दुर्मत दूर पही। रहाओ पूर्ण पूर रहे हो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तह रया समाई। रहाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए
तह मेरे प्रभ तुह सहाई, शरण परयो हर चरण गए प्रभ, गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, आगम रूप अविनाशी करता, पतत पवित एक निमख जपाई है, अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कौ सुरजन के जुगति त्याई है, रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, ओ तिसकी लई लई फुन जाई है, नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर करो आनंदा, गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हरस बरना सा कहो, गुरपुर है मेरी उल्ट धरी, पेख्यो मोहन सब कै संगे, ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहो कृपा निद, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हों क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिसे आज्ञा क्या कहता रहाओ, अन बोले कहो तुही पछाने, जो जियन मैं होता, अरे मन काए कहां लौ डहके, जो पेहती संग सुनता, ऐसो जान पए मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई, जो कालर पीत गिरिए रहाओ, जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पुलाया, काल नेरा आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानका रखाया प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ, काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे, अंधकूब मैं परे उपरानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटे काडे भा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंतन रसना हर चीना, पय आनंदा मिटे आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना रहाओ, एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रख अपने कहो, काहू ना करते कशखीना, बल जावो दर्शन साधु कै, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसै, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ, निवरे दूत दुष्ट बहराई, गुरपुरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा, प्रभ मेरे कावड़ प्रताप, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते ऊपर को नाही। बिलावल महला पंजवा, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कहीं दुख न व्यापै, आगै दरगै पूर्ण काम रहाओ, आप त्याग परिय नित सरनी, गुरते पाइय हो निदान, जन मरण की कटिया फांसी, साची दरगै का निशान, जो तुम करहो सोई पल मानो, मन ते छूटै सगल गुमान, कहो नानक ता की सरनाई, जाका किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा, मन तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर उपकार नित, तिस रसना का मोल किश नाही रहाओ, कुल समूह उदरेखन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही,
सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना आनंद सेती बिखिया बनगाही। चरण प्रभु के बोहित पाए भव सागर पार पराही, संत सेवक भगत हरता के नानक मन लागा है ताही। बिलावल महला पंजवा तीरो देख तुम्हारे रंगा, तुही स्वामी अंतर जामी तुही वसै साध कै संगा रहाओ। खिन मैं थाप निवाजे ठाकर नीच कीड़ते करह रजंगा, कबहू ना बिसरै हिये मोरे ते नानक दास ही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा अचित पूजा जो गोपाल, मन तन अर्प रखो हर आगै सर्ब जिया का है प्रतपाल रहाओ। सरण समरथ अकथ सुखदाता कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राखे अपने को तिसनो लगे न ताती बाल। दामोदर दयाल स्वामी सर्बस संत जना तलमाल, नानक जाचक दर्श प्रमांगे संत जना की मिलै रवाल। बिलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन पए, साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास अहे रहाओ। जेते पुनः चरण से कीने मंतन प्रभ के चरण गए, आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे। निरप होए पजो जगदीश एहो पदार्थ वड भाग लहे, कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रहाओ। काढ़ कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया दिन दीना ताक। पुत्र मीत तन किछु ना रहयो सो छोड़ गया सब पाई साक, कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बिलावल महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेव, आपे आवरतै स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी।

रहाओ। गुर को शब्द मेरा ही हरे बस, हर नामा मन संग धरो, तस्कर पंच निवारो ठाकर, सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई पल माने, पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभु तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उदरो। बिलावल महला पंजवा, ऐसी दीख्या जन स्यो मंगा, तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा, तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ। जन की टहल संपाखन जन स्यो, उठन बैठन जन कै संगा, जन चर राज मुख माथे लागी, आशा पूर्ण अंत तिरंगा। जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, जन की तूर कियो मज्जन नानक, जन्म जन्म के हरे कलंगा। बिलावल महला पंजवा, ज्यो पावे त्यो मोहे प्रतपाल, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, हम पार्क तुम पिता कृपाल रहाओ। मोहे निर्गुण गुण नाही कोई, पहुंच ना सको तुमरी काल, तुमरी गत मित तुम ही जानो, जियो पिंड सब तुमरो माल। अंतरजामी पुरख स्वामी, अनबोलत ही जानो हाल, तन मन शीतल होए हमारो, नानक प्रभ जियो नदर निहाल। बिलावल महला पंजवा, राग सदा प्रभ अपने साथ, तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तुझ बिन जीवन सगलिया काथ रहाओ। रंक तेराओ करत खिन पीतर, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, जल तगन मैं जन आपो धारे, कर अपने दे राखे हाथ। शीतल सुख पायो मन तृपते, हर सिमरतो श्रम सगले लाथ, निर्दान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगलिया काथ। बिलावल महला पंजवा, अपने सेवको कबो ना बिसारो, उरला गोस्वामी प्र मेरे, पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो रहाओ। पतत पावन प्रभ बिर तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर्श स्वामी सुख सारो। बिलावल महला पंजवा, आगे पाछे कुशल भया, गुरपुरे पूरी सब राखी, पार ब्रह्म प्रभ की नी माया रहाओ। मन तन रवर हया हर प्रीतम, दुख दर्द सगला मिट गया, सांत सहजया नंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगन प्रभ कछ ना बिचार्यो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत बनासी, नानक उचरे हर की जया। बिलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसे, करो नगरो पतो धारण, राग स्वामी आप भरोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसे, औदो बिहावत अधिक मोहावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख निरंजन, साधु संग त्रवण जैसे, केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला पंजन।

त्रम तहे तुम मानो साच कहत मैं या कहो। जैसे पाहुन जल मैं राखियो भेद नाहे तह पानी, तैसे ही तुम तहे पछानो भगतहीन जो प्राणी। कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुरजै भेद बतावै, कहो नानक सोई नर गरुआ जो प्रभु के गुण गावै। बिलावल अष्टपदियां महला पहला, कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। निकट वसै देखै सब सोई, गुरमुख बिरला बूझै कोई। विण पै पै भगत न होई, सब रते सदा सुख होई। ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम, गुरमुख पावस रस रस मान रहाओ। ज्ञान ज्ञान कथै सब कोई, कथ कथ बाद करे दुख होई। कथ कहने ते रह न कोई, बिन रस राते मुक्त ना होई। ज्ञान ध्यान सब गुरते होई, साची रहत साचा मन सोई। मन मुख कथनी है पर रहत ना होई, नाम भूले थाओ ना कोई। मन माया बंदियो सरजाल, घट घट व्याप रहो बिख नाल। जो आंजै सो दिसै काल, कार्ज सिद्ध उरदै समाल। सो ज्ञानी जिन सब दिल विलाई, मन मुख होमै पत गवाई। आपे करतै भगत कराई, गुरमुख आपे देवड़े आई। रैणा दाई निर्मल जोत, नाम बिना झूठे कुचल कशोत। वेद पुकारै भगत स्रोत, सुन सुन मानै वेखै जोत। शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ा मंग, गुरमुख सात उत्तम कराम। मनमुख जोनी दुख सहाम, बंधन टूटे एक नाम सामं। मन्ने नाम सच्ची पद पूजा, किस वेखा नाहीं को दूजा। देख कहो पावै मन सोए, नानक कहै अवर नहीं कोए। बिलावल

है तन तन कलातो सब देख अब महन्ना बिन नावै किछ संग ना जाना रहाओ कीचै रस भोग खुशियां मन केरी तन लोका तन पसमै टेरी खाकू खाक रलै सब फैल बिन शब्द नहीं उतरै मैल गीत राग कंताल से कूरे त्रिगुण उपजे बिन से दूरे दूजी दुर्मत दर्द ना जाए छूटै गुरमुख दारू गुण गाए तोती उजल तिलक गल वाला अंतर क्रोध पड़े नाटशाला नाम विसार माया मद पिया बिन गुर भगत नाही सुख थिया सूकर स्वान गर्दप मंजारा पशु मलेश नीचंडाला गुरते मोह फेरे तन जोन पवाई बंधन बांध्या है जाइए गुर सेवा तेल है पदार्थ हृदय नाम सदा कृतार्थ साची दरगह पूछना होए माने हुक्म सीजै दरस होए सतगुर मिलै तां तिसको जाणै रहर जाई हुक्म पछाणै हुक्म पछाण सच्चै दरवास काल बिकाल शब्द पै नास रह अतीत जाणै सब तिसका तन मन अर्पै है ओ जिसका ना ओ आवै ना ओ जाए नानक साचे साज समाए बिलावल महला तीजा अष्टपदी कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ मुख चुंच ज्ञान अंतर लोभ झूठे मान बिन नामै पाज रह निदान सतगुर सेव नाम वसै मन चीत गुर भेटे हर नाम चितावै बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ गुर कहे आसा कार कमावो शब्द चीन सहज कर आवो साचै नाय वडाई पावो आप न बूझै लोक बुझावै मन का अंधा अंध कमावै दर घर महल ठौर कैसे पावै हर जियो सेवियै अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी जोत समानी तिस नाल क्या चलै पहनामी साचा नाम साचा शब्द जानै आपै आप मिलै चुकै अभिमानै।

तही। जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार। बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी। जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुनि उपजै तुन काशी जाई। काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी। ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया तेज तेज समाना। कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जहां कर दे बसै सो जन क्यों डोले। देव मानो सब सुख नव नित ता कै। सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेखै कुटल गांठ।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौप दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर जिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रह समाई। मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साने फल आस सब बिरथी जाई रहाओ जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारै तेरा कुटंब सब छिड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितै कम आई। एह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा कालिया सब थाएं पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हरि अपने स्वामी पहे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे

जो तुद उपकर दुख सुखासा तिसका प्रवासा, क्योंकि जय मन मेरे जोवंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जापो तन अंत छाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो एहो छूटन का साचा प्रवासा। गोंड महला चौथा हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना जहां कहां तुझ राखे सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा मैं सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लो हर तना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी। तिन के चरण मलो हर दसना शब्द पछाण राम रस पावो। ओ उत्तम संत भयो बड़ बड़ना ते जन की वडियाई हर आ वधाई। ओ कटे ना किसे की कटाई एक तिल तिल तिल ना। जिस ते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याय नित कर जुरना। जन नानक हर दान एक दीजै नित बसे हृदय हरि मोहि चरना। गुण महला चौथा जितने साहा पातशाह उमराव सिकदार चौधरी सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान। हर अबनासी सदा थर नह चलो तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हरि भज सदा दीबान। जो हर महल पावे गुरबचनी तिस जेवड़े अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दिसे मन मेरे सब बिनस जाहे जो रंग कुसुंभ कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे जित हर दरगह पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है। जो हर त्यावै सो प्रधान ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा। त्यों सत संगत मिल पतत परवान। ओह सब ते ऊचा सब ते सूचा जा कै हृदय वसया भगवान। जन नानक तिसके चरण पखालै जो हर जन नीच जात सेवकान। गोंड महला चौथा हर अंतर जामी सब तै वरतै जिहा हर कराए तिहा को करैयै। सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुदनो सब दू रख लईयै। मेरे मन हर जप हर नित पढ़ैयै हर बिन को मार जी वाल ना साकै ता मेरे मन कायत कड़ैयै। रहाओ हर परपंच किया सब करता विच आपे अपनी जोत रही है। हर एक को बोले हर एक बुलाए गुरपूरे हर एक दिखाइए। हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासो मन क्या चो रही है। निह कपट सेवा की जय हर केरी ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दस सब किश सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा ध्याई है। जन नानक सो हर नाल है तेरा हर सदा ध्याए तू तुदले छड़ैयै। गोंड महला चौथा हर दर्शन कहो मेरा मन बहुत तृप्त है। जो त्रिखावंत बिन नीर मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। हमरी बेदन हर प्रभ जानै मेरे मन अंतर की पीर। रहाओ मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजावो हर दर्शन सांत शरीर शकाएक। राग गौंड महला पंजवा
चौपदेह कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद सब करता सब भुगता रहाओ सुनतो करता पेखत करता दृष्टो करता दृष्टो करता उपत करता परलो करता व्याप्त करता लिपतो करता भक्तो करता बूजत करता यावत करता जात पी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुर प्रसाद नानक समदृष्टा गोंड महला पंजवा फाक्यो मीन कब की न्याई तू उर्ज रहे कुसुम भायले पगतारे सास ले खैले तो उदरे हर गुण गायले मन समझ छोड़िया वायले अपने रहन कौ ठौर ना पावे काए पर कह जायले रहाओ ज्यो मैंगल इंद्री रस प्रेरियो तू लाग परयो कुटुंबायले ज्यो पंखी एकत्र होए फिर बिशरै थिर संगत हर हर त्यायले जैसे मीन रसन साध

नानक सुख सहज निवास गुण महला पंजवा। निमाने कहो जोदे तो मान सगल भूखे कहो करता दान गर्भ कोर मैं रखन हार ते ठगर कहो सदा नमस्कार। ऐसो प्रभ मन माहे ते आए काटे आव काट जत कतै सहाय रहाओ। एक रंक राव जा कै एक समान कीट हस्त सगल पुराण बियो पूछना मसलत तरै जोगश करै सो आपै करै। जां का अंतना जान सकोए आपे आप निरंजन सोए आप आकार आप निरंकार घट घट घट सब घट आधार। नाम रंग भगत पै लाल जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अगाए नानक तिन जन लागे पाए। गुंड महला पंजवा जा कै संग एहो मन निर्मल जा कै संग हर हर सिमरन। जा कै संग किल बिख होहे नास जा कै संग हृदय प्रगास। से संतन हर के मेरे मीत केवल नाम गाइए जा कै नीत। रहाओ जा कै मंत्र हर हर मन वसै जा कै उपदेश परम पवनसै। जा कै कीर्त निर्मल सार जा कीरेन बांछै संसार। कोट पतत जा कै

मोहे निर्गुण गुण किशु ना है, सर्व निधान तेरी दृष्टि मा है। नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गोंड महल

पाहे नारायण सेव सगल फल पाहे। नारायण मन माहे आधार, नारायण बोध संसार, नारायण कहत जम भाग पलायण, नारायण दंत पाने डायण, नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप, नारायण साध संग नारायण।

जहां कहो राख है राखनहार, तिसका अंकर निरंकार रहाओ। मात गर्व में अगन्ना जो है, काम क्रोध लोमो नापो है। साध संग जपै निरंकार, निंद कै मोय लागे शार। राम कवचो दास का सना हो, दूत दुष्ट तिसको हत नाहे। जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन मैं रुलता खाकू नाल। है पी साचा हो बनहार, सदा सदा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा धार, नानक के प्र प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महानूप। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ। ना हो बूढ़ा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला। ना हो बिनसे ना हो जाए, आज जुगादी रहा सुमाए। ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका एहो करने जोग। ना इस बाप नहीं है समाया, एहो परंपर होता आया। पाप उनका इसलिए अपना लागे, कट कट अंतर सद ही जागे। तीन गुणा एक सकतो पाया, महामाया ता की है छाया। अशाला शेदा पे दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ता की गतमित कशु ना पाए, नानक ता कह बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कै बलहार है जाओ। संतन कै संग राम गुण गाओ। संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरण वड़ पागी पए। राम जपत कछ विघ ना लागे, राम जपत कछ विघ ना व्यापै। गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ। पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल। काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए। सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तुहूर।

कर नमस्कार पूरे गुरुदेव सफल मूर्त सफल जा की सेव अंतरजामी पुरख विदाता आठ पहर नाम रंगराता गुरु गोबिंद गुरु गोपाल अपने दास कौ रखनहार रहाओ पातशाह शाह उमराओ पति आए दुष्ट अहंकारी मार पचाए निंदक कै मुख की नो रोग जय जय कार करे सब लोग संतन कै मन महा आनंद संत जपै गुरदेव भगवंत संगत के मुखी उज्जल पए सगल थान निंद के गए सास सास जन सदा सलाहे पार ब्रह्म गुर बेपरवाहे सगल पै मिटे जा की शरण निंदक मार पाए सब तरण जन की निंदा करे ना कोए जो करे सो दुखिया होए आठ पहर जन एक

गुर कै सिख सतगुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरतै हर द्वारे। जैसा करे सो तैसा पाए अभिमानी की जड़ सर पर जाए। नी तरिया सतगुर तर तेरी कर कृपा रखो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पैज सवारी। राग गोंड बाणी भगता की कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले के सुनिया कही है मिले असंत मष्ट कर रही है। बाबा बोलना क्या कही है जैसे राम नाम रव रही है रहाओ। संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले चख मारी। बोलत बोलत बड़ा बेकारा बिन बोले क्या करे बिचारा। कहो कबीर शुश

पर अपने कर्म की गत मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का पूला। कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम, कट बिनसै गगन न जाए ले। मोहे बैराग पयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहता हो, कर मैं किन जियो दीन रे। हर मैं तन है, तन मैं हर है, सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गोंड

हरे महावत तु जारो काट, इसे तुरावो कालो साट। हस्त ना तोरै तरह ते आन, वा कर दे बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद में जन की जिंद। गोंड नायो मानस नायो देओ, नायो जति कहा वैसे ओ। ना हो जोगी ना अवधूता, ना समाए ना काहू पूता। या मंदिर में कौन बसाई, ताका अंत ना को उपाई रहाओ। ना हो गृही ना हो दासी, ना हो राजना पीख मगासी। ना इस पिंड ना

पांच नारद कै संग बेदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, नाम बिना कैसे पार उतरै, कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै, रहा जारो तिसै जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै रहाओ। जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोईऐ, सूत बिना कैसे मणि परोईऐ, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाईऐ, साधु बिन तैसे अवगत जाईऐ। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, घोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन ताज ओहेरी, कह कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड। कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जम

अश्वमेध जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सिवा सख्त संवादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड नाद प्रमे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सोनारा ज्यों बिखई हेरै परनारी कौडा डार तेहरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड़।

नर ते सुर होए जात निमुख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुरग कौ जीते ओ सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेके नैकट कावो मोहे तेरे नाम अवलंब बहुत जने उदरे नामे की निजमत एहे गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफै ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ जैसे गाय का बाछा शूठला तन थन चोखता माखन कूटला नाम देव नारायण पाया गुर भेड़ता लख लखाया जैसे बिखै हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देव जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंधले की लकरी हर ए नमस्ते हर ए नमः हर हर करत नहीं दुख जमै रहाओ हर हर नाक्ष।

सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जबद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै, नरसे नर होए अवतरै। तू कहियत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखा था, रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहा ते ज्ञानी सियाना, हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या, जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार, सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता।

दास अब तृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे हो 68 तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सबिरथा जावै साधका निंदक कैसे तरै सर पर जानो नरक ही परै रहाओ जे ओ ग्रहण करै कुलखेत अरपै नार सिंगार समेत सगली सिमरत श्रवनी सुनै करै निंद कमनै नहीं गुनै जे हो अनक प्रसाद करावै भूमदान शोभा मंडप पावै अपना बिगार बिराना सांडै करै निंद बोजूनी हांडै निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़ राम कली।

कोई पड़ता सहसा करता कोई कड़े पड़े पुराना कोई नाम जपे जप माली लागे तसै त्याना अब ही कभी किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कवन गते हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नर हरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबरया भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कमन दर कहिए। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिए। जीव त्याने मरिए रहाओ, दुख दरवाजा रोह रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कै आसन पुरख रहै,

जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तव नानक एक मिले। इन विद सागर तरिय जीवत आयो मरिय रहाओ दूजा, राम कली महला पहला सुरत शब्द साख।

रामकली महला पहला, सागर में बूंद, बूंद में सागर, कवन बुझै बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ। दिन में रहण रैण में दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई। पुरख में नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन में जोत, जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। राम कली महला।

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एहो नृत्यकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बांछे पिस्त, कोई सुरगिंदू, कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक।

अगली किश खबर ना पाई, रोवनहार पे उठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंद। एहो तौ रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरने जोग, नह बिनसै अविनासी होग। जो एहो जानो सो एहो नाए, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरै ना आवै जाया। राम कली महला पंजवां, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर ना खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो। बिन गुर पूरे नाही उदार, बाबा नानक आखै हो बीचार। राग राम कली महला पंजवां, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। चार पुकारै ना तू मानै, खट पी एका बात वखानै। दस अष्टी मिले को कहया, तापी जोगी भेद न लया। किंकरी अनूप वाजै, जोगी अमतवार ओरे रहाओ। प्रथमे वसिया सतका खेड़ा, तृतीय मैं किश भया दुतेड़ा। दुतिया अर्धो अर्ध समाया, एक रया ता एक दिखाया। एक ऐ सूत परोए मणिए, गाठी पिन पिन पिन पिन तणिए। फिरती माला बहविद पाए, खिंचा सूत आई थाए। चाहो मैं एक ऐ मट है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया।

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी विभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवे जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इउं जपया नाथ दिन रह नाई हुण पाया गुर गोसाई। रहो दूजा राम कली महला पंजवा करण करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुड सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरले डीठा। रहाओ निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय निकाम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाऊ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा

राज रंग रूप सब कूर नाम बिना होए जासी तूर भरम भूले बाद अहंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख मैं देह बरदानी सागत इवही करत बयानी हर का नाम अमृत कल माहे एहो निदाना साधु पाए नानक गुर गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन ही डीठा राम कली महला पंजवा पंच शब्द तह पूर्ण नाद अनहद बाजे अचरज बिस्माद तेल करे संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निरजोग सुख सहज आनंद पवन साध संग बैस गुण गावै तै रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाओ ऊहा सिमरै केवल नाम बिरले पावै ओ बिश्राम भोजन पाओ कीर्तन आधार निश्चल आसन बेसुमार दिग ना डोलै कतहू ना तावै गुर प्रसाद को।

हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सोरत मत बुद्ध प्रगास, गहर गंभीर अपार गुणतास, जी जंत

ताप कपट खुलाने भ्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवा कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वड़ियाई कीमत कहन न जाई रहाओ। सूर बीर तीरज मत पूरा सहे समा तुन गहर गंभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दे वसै हर नाम। सगल सुख या नंद या रोग समदर्शी पू

हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम पाई राम कली महला पंजवा गहो कर पकरी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ।

रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठावर ओ कई ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरे। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर रहा प्रभ एक रतन मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप पछान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाइए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा कोट प्रकाश ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे जिसनी बुझावे सो कित बिद बुझे। जाननहार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास ए बित। काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जनु अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ

गोपाल मानते कबो न विसर गोपाल तेरे दास की हो मातूर नानक की प्रभ सरदा पूर राम कली महल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ में दूजा नाही कोए तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरण तारण प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगे पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुरमत बिन सै।

मन बसै अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन लाहे। तोट न आवै अखुट भंडार नानक भगत सोहै हर द्वार। राम कली महला पंजवा रतन जिवेहर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता। मेरे राम को भंडार खात खर्च कष्ट उठ न आवै अंत नहीं हर पारावार रहाओ। कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी। सुन समाध गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन। भगत भगत संग प्रभ गोष्ठ करत तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत। कर कृपा जिस आप देवाया साध संग तिन हर तन पाया। दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी रास। राम कली महला पंजवा महिमा ना जाने बेद ब्रह्मे नहीं जाने भेद अवतार ना जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गाते आप जाने सुन सुन अवर वखान रहाओ। संकरा नहीं जाने भेव खोज तहारे देव देविया नहीं जाने मर्म। सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म अपना रंग करता केल आप बिछोर आपे मेल। एक परमे एक भक्ति लाए अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेखे आखी। नहीं लेप तिस पुन्ना पाप नानका प्रभ आपे आप। राम कली महला पंजवा किशु काजना कियो जान सुरत मत नाही किश ज्ञान। जाप ताप सील नहीं धर्म किशु ना जानो कैसा कर्म। ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिन दूजा अवर ना कोई। भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ। रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास बिखे ब्याद के गाव में बास। करण हार मेरे प्रभ एक नाम तेरे की मन में टेक। सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगंत जी का दाता जिसे जनाम है तिन तू जाता। जो उपायो तिस तेरी आस सगला राध है प्रभ गुणतास। नानक दास तेरे कुर्बान बेअंत साहेब मेरा मेहरबान। राम कली महला पंजवा रखन हर दयाल कोट पव खंडे निमख ख्याल। सगल अराधय जंत मिलिया प्रभ गुर मिलमंत। जियन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी।

तारण तरण हर शरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊचा पार सुमत सार जित हर समरीजै कर कृपा जिस आबे दीजै सुख सहज आनंद हर नाओ नानक जपया गुरमिल नाम।

आए बूढ़त लोहो साध संग तरह नानक छा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवा मन माहे जा भगवंत गुरपुर एहो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप तिस कौ सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सह सुख पावे मीत। साहिब मेरा अत भारा खिन मैं था प्यो थपनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्ज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान रखन हार निदान सर्व की

कारण करण करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लाह लाख अपार खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ जगनाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

प्रभु की जय। राम कली महल्ला पहला, अंतर उत्पुज अवरना कोई, जो कही ऐसो प्रभु ते होई, जुगै जुगंतर साहिब साहिब सोई, उत्पुत परलो अवरना कोई। ऐसा मेरा ठाकर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगै जंपीर। रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहेब अमरिया तोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन में बैसै डूगरिया स्थान, नाम विसार पचाया उमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावै इधर गय मान, हठ हंकार करै नहीं पावै, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीर्थ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जंपर बांधे लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गह गुरसेवा, मन तन निर्मल अवमान्या पेवा, कर्म मिलै पावै सच नाम, तुम शरणागत रहो।

झूठ ना पावस पाखंड कीना, बिन गुर शब्द नहीं करबार, नानक गुरमुख तत विचार। आराम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावै बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै, नाम विसार पव जल पाया। तन तन देख तो गर्भ गया, कनक काम नीसो हेत वधाए, हे की नाम विसार है भरम गया रहाओ। जत सत संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में काष्ट पाया। पुन दान इस नाना संयम, साध संगत बिन बाज जाया। लालच लागे नाम बिसारे हो, आवत जावत जन्म गया। जा जमत आए केस गहे मारे, सुरत नहीं मुख काल गया। अहनिस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्व दया। बिन गुर शब्द ना गद पत पावे, राम नाम बिन नरक गया। खिर मैं वेश करे नटुआ ज्यों, मोह पाप मैं गलत गया। इत्युत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन पया। करे बेकार विथार कनेरे, सुरत शब्द बिन परम पया। हम मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपत को आवत देखै, सागत मानो अभमान पाया। जिसका हो तानो तान सो फिर ले वै, अंतर सहसा दुख पाया। अंत काल के साथ ना चल, जो दी सह सब तिसै मया। आद पुरख परंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पया। मुए कौ रोवै किसै सुनावै, पैसा गिर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदर, सागत जंजाल पराल पया। जाए आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया। जो किश करना सो कर रहया, बख्शन हारै बख्श लया। जिने हो चाखिया राम रसायण, तिन की संगत खोज पया। रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया। दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते बिरगत पया। आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहि समाए लया। आराम कली दखणी महला पहला, जत सत संजम साज दृढ़ाया। सा शब्द रस लीना, मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना। अहनिस रह एक लिव लागी, साचे देख पतीना रहाओ। रह गगनपुर दृष्ट समय सुर, अनहद शब्द रंगीना। सत बंद कुपीन भरपुर लीना, जिहवा रंग रसीना। मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना। एक मैं सर्व सर्व मैं एका, एह सतगुर देख दिखाई। जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभ लिखण ना जाई। दीपक ते दीपक परगासिया, त्रिभवन ज्योत दिखाई। सच्चे तखत सच महली बैठे, निरपव ताड़ी लाई। मोहे गया बैरागी जोगी, कट कट किंगरी वाई। नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सिखाई। राम कली महला पहला, औहठ हस्त मड़ी कर छाया। तरन गगन कल तारी, गुरमुख केती शब्द उधारी। संतो रहाओ, ममता मार हो मैं सोखै, त्रिपवन जो तुम्हारी। मनसा मार मने मैं राखै, सतगुर शब्द विचारी। सिंगी सुरत अनाहद वाजै, घट घट जो तुम्हारी। परपंच बेण तही मन राखिया, ब्रह्म अगर पर जारी। पंच तत् मिल अहनस दीपक, निर्मल ज्योत अपारी। रव सस लौके हो तन किंगरी, वाजै शब्द निरारी। शिव नगरी मैं आसन अवधू, अलख गम्य पारी। काया नगरी हो मन राजा,
ਪੰਚ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਆਸਣ ਕਰ ਰਾਜਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਕਹੇ ਕਹੇ ਬਪਰੇ ਜੀਵਤ ਮੂਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੁ ਮਹੇਸ਼ ਇਕ ਮੂਰਤ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ ਕਾਇਆ ਸੋਧ ਤਰੈ ਪਵ ਸਾਗਰ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤਿਸ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵਿਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਗੁਣਦਾਤਾ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚੌਥੇ ਵਰਤੈ ਇਹਾ ਭਗਤ ਨਿਰਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮ ਚੀਨੈ ਹਿਰਦੈ ਇਕ ਮੁਰਾਰੀ ਮਨੁਆ ਅਸਤਰ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤਾ ਇਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਬੇਦ ਬਾਦ ਨਾ ਪਾਖੰਡ ਔਦੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਔਦੂ ਜਤ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਰੇ ਔਦੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਵਜਲ ਹੈ ਔਦੂ ਸ਼ਬਦ ਤਰੈ ਕੁਲਤਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਜੁਗਚਾਰੇ ਉਧਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਜੁਗਚਾਰੇ ਔਦੂ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਔਦੂ ਨਿਕਸੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁੰਦਰਾ ਕੰਨੀ ਪਾਏ ਜੋਗੀ ਖਿੰਥਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਬਭੂਤ ਲਾਏ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੀਨ ਪਵਣ ਜਨ ਲਿਆ ਐਸੀ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਏ ਜੋਗੀ ਜਿਤ ਕਿੰਗਰੀ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਾਉ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਤ ਕਰ ਝੋਲੀ ਜੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੁਗਤ ਪਾਈ ਧਿਆਨ ਕਾ ਕਰ ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ ਸਿੰਘੀ ਸੁਰਤ ਵਜਾਈ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਸ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਈ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਚੜੈ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪੱਲੈ ਪਾਈ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸਚ ਪੱਲੈ ਪਾਏ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਸਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਵਮਾਨ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ

मनसा मार मन सहि समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी, चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम, ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती, नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ। हर बिन सब किश मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाणा मन वसाई। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुक्ताए ना पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई, बिन नामे होर पूजना होवी, भरम भुली लोकाई। गुरमुख आप पिछाणे संतो, राम नाम लिवलाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। पहाने ते सब सुख पावे संतो, अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो, कूड़ करे वड़ियाई, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, लै जासी पत गवाई। जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सतसंगत में लाई। गुरमुख गावे आप गवावे, दर साचै सोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे, सच नाम लिवलाई। पै भंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सखाई। सब किश आपे आप वरतै, नानक नाम वड्याई, राम कली महला तीजा। हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल शब्दे मैल उतारी, संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कट अंतर, करतै आप सवारी रहाओ। पारस परसे फिर पारस होए, हर जीव अपनी कृपा तारी। एक पेख करे फिर अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी। एक आंदन भगत करे दिन राती, राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते, सहजे हों मैं मारी। पै बिन भगत ना होई कभी, पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया, ज्ञान तत् बिचारी। आपे आप कराए करता, आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया, हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सालाही, विचों आप निवारी। नाम पदार्थ गुरते पाया, खुट सचे भंडारी। अपनिया भगतां नो आपे तुठा, अपनी कृपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी, गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका, आखण बिखम बिचारी। शब्द लगे से जन निस्तरे, पौजल पार उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावे, बूझे को विचारी। जो तुर लिखिया सोई पाया, मिल हर शब्द सवारी। काया कंचन शब्दे राती, साचे नाए प्यारी। काया अमृत रही पर पूरे, पाइय शब्द विचारी। जो प्रभ खोजे से ही पावे, होर फूट मोए हंकारी। बादी बिन सह सेवक सेवे, गुर कै हित प्यारी। सो जोगी तत् ज्ञान विचारे, हम मैं तृष्णा मारी। सतगुर दाता तने पछाता, जिसनो कृपा तुम्हारी। सतगुर ना सेवै माया लागे, डूब मुए हंकारी। जिचर अंदर सास, तिचर सेवा कीचै, जाय मिलिय राम मुरारी।
ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੁਮਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਵਿੱਟੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏਗਾ ਉਬਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਜਗਾਏ ਸਹੀ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਮੂਏ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਭਗਤ ਜੀਵੇ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਈ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਗਤ ਪਾਈ ਏਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ।

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए, सिर सिर धंधा लाई, तिसै श्री वो ता सुख पावो, सतगुर मेल मिलाई, अपना आप

राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिया प्रभ सगल तुम्हारी धारणा एहो मन हर के

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सूखे सुख गुदारना। भगत सरण जो आवे प्राणी तिस इहां उहां ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्ये वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर बंजाई। कारण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायन एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसिया जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई। पुत्र

महागर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया। कर पाप जोनी पै पीत होई दे ससन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो। सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए। कर गैलीनी सजने जन्म जन्म के मीत चरने दासी कर लई नानक प्रभित चीत। शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कण उन्म बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो। प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे। प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हरकंत पाया सदा मन पावंद जियो। सलोक आस प्यासी मैं फिराऊं कब पेखां गोपाल है कोई साजन संत जानो नानक प्रभ मिलनहार। बिन मिलबे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। शंत रुत सरद अडंबरो असू कतके हर प्याह जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो। बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगण त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना। ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो। सलोक जलन बुझी शीतल पए मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत। साध पठाए आप हार हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर। शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रोह जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया। पाओ भगत गोविंद बांशत जमना।

जीवन चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए चेता एक तही सुभोए चित वसै राचे हर नाए मुक्त भया पत स्यों कर जाए छीजे देहे खुले एक गंड छे अन देखो जगहंड तू पिशाब जे सम कर जाने बंधन काट मुक्त कर आने छाया छूछी जगत पुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना छीजे जोबन जरुआ सिरकाल काया छीजे पही सिवाल जापै आप प्रभु त्यो लोए जुग जुग दाता अवर ना कोए ज्यो पावै त्यों राखै राख जस जाचौ देवै पत साख जागत जागरहा तुद पावा जा तू मेलै ता तुजै समावा जय जयकार जपो जगदीश गुरमत मिलिया बीसा कीस चख बोलन क्या जग स्यों वाद चूर मरै देखै प्रमाद जन्म मुए नहीं जीवन आसा आए चले पहे आस निरासा।

जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलहार जाओ, जो उसारे सो ढांसी तिस बिन अवर ना कोए, गुर प्रसादी तिस संभला तां तन दुख ना होए, हणा को मेरा

पन पन कड़ी है घड़ घड़ भजै टाहे उसारै उसरे टाहै सर पर सुख है पी पर पुख है समर्थ वे परवाह है भरम भुलाने पए दीवाने विण भागा क्या पाई है गुरमुख ज्ञान डोरी प्रपकड़ी जिन खिंचै तिन जाई है हर गुण गाए सदा रंग राते बहुण न पछोताई है पब्बै पालै गुरमुख बूझै तनिज कर वासा पाई है पब्बै पौजल मार्ग विखड़ा आस निरासा तरी है गुर प्रसादी आपो चीनै जीवत्या इव मरियै माया माया करम माया किसै ना साथ हंस चलै उठ डुमण माया पूली आथ मन झूठा जम जो

अभ्यागते है ना आखियान जे पर कर भोजन करे न उदरे कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रहण आयर मह सब किश है, करमी पल्ल पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म बिनास, रसना हरस ना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवे दासन दास, ता अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबे न छोड़े पास। ज्यों जल में कमल अलिपतो वरता, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै त्यवहार गुणतास। पौड़ी शति जोग बारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजिया नो, आप मत दीनी। सिमरत शास्त्र साजिया नो, पाप उन गणत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, एहो तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए, जो सह रत अपने, तिन तन लोभ रत ना होए। पै पै तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, ज्यों बै संतर तात सुध होए। त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाए, नानक तेजन सोहने, जो रते हर रंग लाए। महला तीजा, आराम कली राम मन वसिया, ता बनिया सिंगार, गुर कै शब्द कमल बिकसिया, ता सौंपिया भगत भंडार। परम गया ता जागया, चूका अग्ञान आधार, तिसनो रूपया त्यगला, जिस हर नाल प्यार। सदा रवै पिर अपना, सोभावंती नार, मन मुख सिंगार न जाननी, जसन जन्म सभार। बिन हर भगती सिंगार करै, नित जमै होए खुआर। संसार विच सोभ ना पाए नी, अगे जे करे सो जाने करतार। नानक सच्चा एक है, दोह विच है संसार, चंगे मंदे आप लायन, सो करन जे आप कराए करतार। महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई, दूजी नाही जाए, जे बहु तेरा लोची है, बिन कर्मा पाया ना जाए। अंतर लोभ विकार है, दूजे पाए खुवाए, तन जमन मरण न चुकई, हमें विच दुख पाए। जिन्नी सतगुर सिउ चित लाया।

पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदै सब तावै आप नहीं चलिया चल है होर आवै जावै सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पावै निज कर वासा पाई है सच सिफत समावै सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक

सूत पाए करे बुरियाई, नाता तोता थाए न पाई। मुसलमान करे वड्याई, विण गुर पीरै को थाए न पाई। राहो दसाए।

अहन से अंतर रहते आन ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप। महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त को नाओ कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाव जे

निरंकार जो रह समाए, काहे भिखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देह गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना। मूर्ख के क्या लखन है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक माने सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरै ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखैरे मना, सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलबा पौसन आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आवन जान न सुजई पीड़ी गली फही। कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवरया सब आपै। हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है हर भगती रापै। सब मंतन हरिया होया हंकार गवापै। सब

रामकली की वार महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवां जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवां एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरे देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत पर प्रटिया आपे वडपात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन।

कोई ऐसा सज्जन लोड लाहो जो मेले प्रीतम मोहे गुरपुरे में लाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है कोई ना किसी ही वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देखे आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है सर्वतार समरथ हों तिस कुर्बानी है गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई की तियान सब रखे कुटुंबे नाल कार्ज आप सवारयान सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख गुरवण तिण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो पवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै जिसै जराए आप सो ही अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंतरै सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जपदे नाम जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सदबलिहारै जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्लै पाए जो रत्ते रंग गोविंद कै हौ सदबलिहारै।

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी वेख दो कड़ै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिस कहै स्वामी वल निरपौ सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थई जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा।

दियले जैसे कनक कला चित मांडियले रहाओ। आनी ले कुंभ भराई ले उदक राजकुमार पुरंदरीए हस्त बिनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियले। मंदिर एक द्वार दस जाके गौ चरावन छियले पांच कोस पर गौ चरावत चीत सो बछरा राखियले। कहत नाम दे सुनो तिलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज विरोधी चीत सो बारक राखियले। वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवित ना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मैं अनहद वेद मजाओ गो। बैरागी रामै गावो गो सबदा तीता नहद राता या कुल कह कर जाओ गो रहाओ। एड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओ गो चंद सूरज दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओ गो। तीर्थ देखना जल मैं पैसो जी जंत ना सतावो गो। आठ साठ तीर्थ गुरु दिखाए कठी पीतर नाओ गो। पंच सहाई जन की शोभा पलो पलो ना कहावो गो। नामा कह चित हर स्यों राता सुन समाध समा।

पानी पवन में लाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहां तेरे आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत् है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करै, उल्ट तीर्थ मरै, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट न की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जाओ गोदावर जाइये, कुंभ जाओ केदार नाइये, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जाओ तीर्थ करै, तन जाओ हिवाले गारै, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ।

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै। जथ रथ राय नंद राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारसै नाम परसै। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते। एह बुद्ध कबै ना नासी, कहो रविदास समय सबै नहीं समझस। भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगलाए और सुख मना, तीन बसाए कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहां निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी, तह बाजे शब्दा नाहद बाणी, तह चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी।

उपजै ज्ञान दुर्मत सीजै अमृत रस गगन अंतर भीजै एस कला जो जानै पेओ पेटै तास परम गुरदेओ दसवं द्वारा अगमया पारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर थाती जागत रहै सो कवो ना सोवै तीन तलोक समाध पलोवै बीज मंत्र लै हिरदय रहै मनुआ उल्ट सुन महंगा है जागत रहै ना अलिया भाखै पांचो इंद्री बस कर राखै गुर की साखी राखै चीत मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत कर पल्लव साखा बिचारे अपना जन्म ना जुवै हारे असर नदी का बंदै मूल पच्छम फेर चढ़ावै सूर अजर जरै सो निजर चरै जगंग नास्यो गोष्ठ करै चौ मुख दीवा जो द्वार पलू अंत मूल बिचकार सर्व कलाले आपे रहै मन मान करत नामै गुहै मस्तक पद्म द्वालै मणि माहे निरंजन त्रिपवन धनी पंचे शब्द निर्मायल बाजे टुलके चवर संख कान गाजे दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान बेणी जाचे तेरा नाम राग नट नारायण।

मेरे मानो जप अहनस नाम हरे, कोट कोट दोख भव कीने, सब पर हर पास धरे रहाओ। हर हर नाम जप आराध्य सेवक पाए खरे, किल विख दोख गए सब निकर, ज्यो पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे। पंच दोख असाध नगर में, एक खिन पल दूर करे। वडभागी हर नाम ते आवे, हर के भगत हरे। तिनकी संगत देह प्रभ जाचौ, मैं मूड मुग्ध निस्तरे। कृपा कृपा धार जग जीवन, रख ले वो शरण परे। नानक जन तुमरी शरण आई, हर राखो लाज हरे। नट महला चौथा, राम जप जन रामे नाम रले। राम नाम जप्यो गुर बचनी, हर तारी हर कृपले रहाओ। हर हर अगमया गोचर स्वामी, जन जप मिलो सलल सलले। हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन के बल बलले। परखोत्म हर नाम जन गायो, सब दालद दुख दलले। विच देही दोख असाध पंच तातु, हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई, जो देखे सस कमले। उनवे कान कान कान हर गरजे, मन बिकसे मोर मुरले। हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीवे देख हर मिले। जन नानक हर अमल हर लाए, हर मेलो अंद भले। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे। गुर प्रसादी हर नाम ते आयो, हम सतगुर चरण पखे रहाओ। उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो, हम पापी शरण रखे। तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो, हर दियो नाम मुखे। हर गुनी ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे। जो चंदन संग बसे निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे। हमरे अवगन बिखिया बिखे के, बहु बार बार निमखे। अवगन आरे पाथर पारे, हर तारे संग जनखे। जिनको तुम्हार रखो स्वामी, सब तिनके पाप क्रिखे। जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी, तुम दुष्ट तारे हरणखे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर राम रंगे। हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ। जन्म जन्म के पूल चूक, हम अब आए प्रभ शरणगे। तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हम राखो वड पापगे। तुमरी संगत हर को ना उधरे हो प्रभ।